किशोर कुमार जी की आवाज में दूरियां नजदीकियां बन गईं। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का नाम ही जिंदगी है।

लहजा समझ में आता है मुझे अब हर किसी का, लहजा समझ में आता है मुझे अब हर किसी का, बस किसी को शर्मिंदा करना अब मेरे मिजाज में नहीं।

0: ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో. మరి కాసేపట్లో హిందీలో అలాగే ఇంగ్లీష్లో వార్తలు వింటారు.
1: आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे. ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी. हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है.
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं. दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं. पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है. 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए. इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की. इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे. इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची. ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे. सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है. देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है. इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है. नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है. इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है. झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है. सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं. श्री अमरनाथ जी तीर्थयात्रा आज से शुरू हो रही है. तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी. पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया. 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं. बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सकती.

பார், டப்பே சிஸ்டப் பார், பார் தஞ்சை ரோ டான்ஸ் ஃப்ளோர்.

All right, friends and folks out there, it's Namaste, Hello, Adab, and this is your Radio Man welcoming everybody to this very amazing show. And आज सुबह ही इतनी खूबसूरत थी कि टेम्परेचर गिर गया है, तो आप अपने रेडियो सेट्स पर ये ख़ास कार्यक्रम सुबह का जो सफ़र है आप मेरे साथ बिताने वाले हैं, तो लेकर आया हूँ रंग बिरंगी महफिल जहाँ हिंदी गानों की मिठास के साथ साथ अंग्रेज़ी गानों का हुक भी रहेगा। तो इस शो में हम ना सिर्फ गाने बजाते हैं बल्कि उनके पीछे की कहानियाँ, यादें और छोटी छोटी जो बातें हैं, रिव्यूज़ होने दीजिए, वो भी हम एक साथ करते हैं। वेस्टर्न

रंगीनियों के ताल्लुक से तो एक बार फिर से आपको बता दें कि रेनबो पर रंगीनियों का ये कार्यक्रम नमस्ते हेलो आदाब चल रहा है। मेरा नाम है रेडियो मैन और हम पहुंच रहे हैं रेडियो की रंगीन तरंगों के संग जो कि है 101.9 के माध्यम से। गाइड 1965 की ये फिल्म जिसे देवानंद के भाई साहब विजय आनंद ने इसे डायरेक्ट किया था, एस डी बर्मन ने म्यूजिक दी और फिर लिरिक्स शैलेंद्र ने लिखे। गाइड इज वन ऑफ हिंदी सिनेमाज मास्टर पीसेस, अ स्टोरी ऑफ लव, बिट्रेयल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। देवानंद प्लेज राजू, अ टूरिस्ट गाइड हुज लाइफ टेक्स ड्रामेटिक टर्न्स व्हेन ही फॉल्स इन लव विद रोजी वहीदा रहमान, अ वुमन ट्रैप्ड इन अ लवलेस मैरिज। तो ये है फिल्म की मुख्तसर सी कहानी, लेकिन ये जो सॉन्ग है, ये जो गाना है, ये जो नगमा है, तेरे मेरे सपने, वॉज रिकॉर्डेड इन जस्ट वन टेक बाय मोहम्मद रफ़ी, है ना कमाल की बात, हु पोर्ड हिज हार्ट इन टू द मेलोडी। और एस डी बर्मन साहब ने इनिशियली थोड़ा हेजिटेशन दिखाया ट्यून को लेकर, बट एक बार मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया तो बर्मन साहब ने कहा कि अब गाना अमर हो गया। जी हाँ, इट हैज़ बिकम इटर्नल एंड दैट्स वाई वी आर यू नो ब्रॉडकास्टिंग द सॉन्ग टाइम एंड अगेन। एंड द फिल्म म्यूजिक वॉज सो पावरफुल दैट इट ओवर शेडोड मैनी कॉन्टेम्प्ररी रिलीजेस एंड गाइड बिकेम अ कल्चरल लैंडमार्क, है ना कमाल की बात दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों तेरे मेरे सपने सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक कैनवस है जहाँ दो रूह अपना मुस्तकबिल रंगते हुए नजर आती है। रफ़ी साहब की आवाज़, शैलेंद्र की शायरी और बर्मन साहब का जादू हमें याद दिलाता है कि ख्वाब तभी खूबसूरत होते हैं जब वो साथ देखे जाएं, इकट्ठा होकर दोनों का मुस्तकबिल तय करें। आप बने रहिए हमारे पास यही FM रेनबो पर और कहानियों और सुरों का सफ़र जारी रहेगा। ये है आपका अपना शो नमस्ते हेलो आदा।

तो दोस्तों, आपको क्या ये गाना याद है या फिर इस फिल्म की जो टाइटल है वो याद है? नाम याद रहेगा या नहीं रहेगा ये हमें बताइए आप ज़रूर पर ज़रूर, क्योंकि फिल्म का नाम है किनारा और ये हमेशा के लिए एक ऐसा किनारा है जहाँ पर कश्तियों के साथ साथ आप भी वहाँ पर रुकना या ठहरना चाहते हैं। गुलजार की डायरेक्ट करदा ये फिल्म थी जिसमें जितेंद्र, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के मुख्य भूमिका में उन्होंने काम किया था। आर डी बर्मन ने इसे संगीत से पिरोया और गुलजार ने खुद इसके बोल लिखे। लता मंगेशकर और भूपेंद्र की खूबसूरत आवाज़ में आपने गाना सुना किनारा जो है।

0: की खूबसूरत आवाज़ में आपने गाना सुना। किनारा जो है वो दरअसल एक पॉइनेंट लव स्टोरी है जहाँ पर रोमांस है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं लॉस और लॉन्गिंग का भी जज्बा नज़र आता है। गुलजार ने डायरेक्ट किया और फिर जैसे गुलजार ज़िंदगी को करीब से जानते हैं, उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई जहाँ पर इमोशंस के लिए बहुत ज़्यादा जगह और गुंजाइश थी। और नाम गुम जाएगा इज़ ए मेडिटेशन सॉन्ग ऑन मोरालिटी, मेमोरी, हाउ नेम्स मे फेड बट आर्ट एंड लव रिमेन इटर्नल। अगर कल के दिन किसी वजह से आप अगर नाम भूल जाएंगे या फिर किसी का नाम आपको याद नहीं रहेगा, तो क्या वो शख्स आपकी ज़िंदगी से ऐसे ही गायब हो जाएगा? बड़ी ही दिक्कत वाली बात है ना। भूपेंद्र सिंह की हॉन्टिंग आवाज़ एक बार फिर से याद दिलाती है कि लता मंगेशकर की एथेरियल टोन, दोनों ने मिलकर इसे एक टाइमलेस क्वालिटी बना दिया। आर डी बर्मन का क्या कहना, मिनिमलिस्ट अरेंजमेंट के साथ उन्होंने गुलजार की शायरी को एक शाइनिंग टोन में तब्दील किया, मेकिंग दिस वन ऑफ द मोस्ट फिलोसॉफिकल सॉन्ग्स ऑफ हिंदी सिनेमा। है ना कमाल की बात। तो दोस्तों, नाम गुम जाएगा सिर्फ एक नगमा या गीत नहीं, ये एक फलसफा है जो सुरों में लिपटा हुआ है। गुलजार, आर डी बर्मन, लता मंगेशकर और भूपेंद्र हमें याद दिलाते हैं कि कला ही वो अमृत है जो इंसान के पास है। आप हमारे साथियों ही बने रहिए और FM रेनबो पर ये हमारा जो कहानियों और सुरों का सिलसिला है वो जारी रहेगा। ये है आपका अपना शो, नमस्ते, हेलो, आदाब, और मैं हूँ आपका रेडियो मैन। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत पे रहेगा किशोर दा का एक बहुत ही शानदार सा नगमा।
1: Hey there, do you agree with me that some emotions cannot be explained? They can only be tasted. With a pinch of history, a spoonful of culture, and with a whole lot of flavor, every dish has a tale to tell. Of its roots, of its rich legacy, and about the goodness within it. From royal recipes to timeless streetside favorites, discover the stories behind your loved foods on Jashne Hyderabad on Rainbow FM at 2 p.m. every day. Jashne Hyderabad, where food is served on air.
2: Maataina
3: paataina
4: edo edo undi gundelo tollu edi artham kaadu paiki chetallu
2: e chotaina
3: srotala aanandalagani
2: madhura gaanaala manoranjani
3: mana janaranjani
4: na manasune
3: జనరంజనిలో మీకు నచ్చిన పాటను వినాలనుకుంటున్నారా? అయితే ప్రతి బుధవారం ఉదయం 9 గంటల నుండి 10 గంటల వరకు మాకు కాల్ చేయవలసిన మా నెంబర్లు 0402324 0852, మరొక నెంబర్ 2324 0856. జనరంజని, శ్రోతల మనోరంజని, ప్రతిరోజు ఉదయం 7 గంటల 30 నిమిషాలకు మీ వివిధ భారతి 102.8

ऑलराइट दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब। नमस्ते हेलो आदाब यानी तीन अल्फाज जो हमेशा हर ग्रीटिंग्स यानी कि हैदराबाद की गली कूचे हर एक के साथ आप इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कोई एक तो आप ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, चाहे बड़े हों या बुज़ुर्ग, आप हमेशा कहेंगे नमस्ते हेलो या आदाब, और फोन पर भी आप ऐसे ही कहेंगे। सो यू हैव ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9 एंड टुडे वी सेलिब्रेट द अनफॉरगेटेबल वॉइस ऑफ मोहम्मद अजीज। जी हाँ, आज उनका यौम पैदाइश है। 1954 को जन्मे मोहम्मद अजीज, एंड फ्रॉम द बसलिंग स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता टू द ग्रैंड स्टेजेस ऑफ बॉलीवुड, अजीज साहब ने दुनिया को कुछ ऐसे गाने दिए जो कि हमेशा लाफानी रहेंगे। His voice carried passion of qawwalis and everything. जी हाँ, आज हम याद करेंगे एक ऐसे कलाकार को जिनकी एक बेमिसाल आवाज़ है और कोलकाता की गलियों से लेकर बॉलीवुड की जो खनक है वहाँ तक उनका जो सफ़र रहा है कैसा रहा है वो हम जानेंगे। अजीज साहब ने हमें बेशुमार गीत दिए, एक दौर की पहचान भी वो कह जा सकते हैं। उनकी आवाज़ में कव्वाली का जो जज्बा है वो बरकरार है, रोमांस की मिठास है, डांस की ताकत है, और मुझे उम्मीद है कि अगले दो घंटों में हम मोहम्मद

अजीज साहब की जिंदगी के कुछ ऐसे गोशों पर रोशनी डालेंगे और कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करेंगे जो शायद आपको पता हो या ना पता हो। तो आइए गाने और कहानियों के सफर के साथ आज शुरू करते हैं मर्द टांगे वाला। और ये मर्द ने आवाज दी और ये टांगा वहां से निकल पड़ा।

दर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।

0: ऑलराइट दोस्तों, तो ये टांगा आपसे छूटने ना पाए और आप इस टांगे पे चढ़ जाइए, क्योंकि हमने तो सवारी कर ली है, हमने इस मर्द टांगे वाला की बात मान ली है। मर्द टांगे वाला हूँ मैं, मर्द टांगे वाला। मनमोहन देसाई की डायरेक्शन तले ये फिल्म आई थी। अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, दारा सिंह, निरूपा रॉय, एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। अनु मलिक के संगीत में प्रयागराज ने इसका गीत लिखा था और सिंगर थे और हैं मोहम्मद अजीज। मर्द इज अ क्विंटेसेंशियल मनमोहन देसाई मसाला एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ एक्शन, ड्रामा, पैट्रियटिज्म। अमिताभ बच्चन प्लेज राजू, अ फियरलेस टांगे वाला। इसी वजह से मर्द टांगे वाला ये गाना उन पर पिक्चराइज हुआ। और राजू जो है, दरअसल वो ही राइजेज अगेंस्ट द ऑपरेशंस एंड इनजस्टिस, है ना कमाल की बात। तो मर्द टांगे वाला मोहम्मद अजीज की एक ब्रेक थ्रू सॉन्ग थी बॉलीवुड में, उन्होंने कदम जमाए थे। गोकर्ण की ये पहली फिल्म नहीं थी, लेकिन दूसरी होने के बावजूद उनका एक ऐलान था बॉलीवुड के लिए कि मैं आ चुका हूँ। इट वॉज अ कैप्टिवेटिंग यू नो स्टारडम फॉर हिम। हिज पावरफुल हाई पिच डिलीवरी मैच अमिताभ बच्चन टावरिंग एंग्री यंग मैन वाली जो कैफियत है, उसके लिए परफेक्ट मैच मिल गया था। अनु कपूर, बल्कि अनु मलिक उस ज़माने में नए थे और उन्हें भी नए लोगों की तलाश थी, और इस तरह उन्होंने इस टैलेंट को रिकग्नाइज किया और ये सॉन्ग ट्रैक कंपोज किया। द सॉन्ग्स एनर्जी एंड पैट्रियोटिक टोन्स यू मेड इट इंस्टेंट क्राउड पुलर। और फिर उसके बाद जहाँ कहीं भी रैलीज होने दीजिए, मास प्रोटेस्ट या सेलिब्रेशंस का माहौल होने दीजिए, 1980s में ये गाना मर्द टांगे वाला हर कोई गा रहा था। चाहे वो बाइसाइकिल पे होने दीजिए, बाइक पर, कार में, भले ही टांगा ना हो, लेकिन टांगे वाले का काम ज़रूर ये गाना कर रहा था। सो मोहम्मद अजीज़ की एबिलिटी सस्टेन हाई नोट्स गिव द ट्रैक इट्स अनफॉरगेटेबल पंच, समथिंग फ्यू सिंगर्स कुड अचीव, है ना कमाल की बात। तो दोस्तों, मर्द टांगे वाला सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं था, ये एक हिम्मत का ऐलान था। अमिताभ का हीरोइज्म, साउंड ट्रैक और मोहम्मद अजीज की स्टार आवाज का आगाज था। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए एफएम रेनबो 101.9 पर, जहां पर लेजेंड्स की कहानियां और मोहम्मद अजीज के ताल्लुक से हम बात करेंगे। ये है आपका अपना शो, नमस्ते, हेलो, आदाब।
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ ను పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
2: Hey there, do you agree with me that some emotions cannot be explained? They can only be tasted. With a pinch of history, a spoonful of culture, and with a whole lot of flavor, every dish has a tale to tell. Of its roots, of its rich legacy, and about the goodness within it. From royal recipes to timeless streetside favorites, discover the stories behind your loved foods on Jashne Hyderabad on Rainbow FM at 2 p.m. every day. Jashne Hyderabad, where food is served on air.
3: Maataina
4: paataina
5: edo edo undi gundelo tollu edi artham kaadu paiki chetallu
3: ee chotaina
4: శ్రోతుల ఆనందాలగని
3: మధుర గానాల మనోరంజని
4: మన జనరంజని
5: మనసునే మీటకే నేస్తమా
4: జనరంజనిలో మీకు నచ్చిన పాటను వినాలనుకుంటున్నారా?

0: マヌジェネレンジェニ
1: ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए हम अगले गाने की जो शुरुआत है वो करते हैं. सो फ्रेंड्स, आपके आ जाने से एक ऐसा डांस नंबर है जिस पर कोई भी उम्र का आदमी थिरकना पसंद करता है. सो इट वॉज अ कल्चरल वेव ऑफ द 80s पावर्ड बाय मोहम्मद अजीज आवाज. हिज सॉन्ग्स रिमाइंड अस दैट प्लेबैक सिंगर्स आर द हार्ट बीट ऑफ द सिनेमा. है ना कमाल की बात. तो प्लेबैक सिंगर्स को एक धड़कन देने वाले मोहम्मद अजीज की आज यौम पैदाइश है. तो इस मौके पर हम कम अज़ कम नमस्ते हेलो आदाब में तकरीबन दो घंटे तक उनके ही गाने आप तक पहुंचाएंगे. आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, जुड़िए, और अगर हो सके तो अपने व्हाट्सएप से हमें मैसेज भी कीजिए. आपकी हिम्मत अफजाई हमारे लिए बहुत बहुत काबिल सताइश रहेगी और हमें भी काफ़ी मौका और हिम्मत देगी. तो आप हमें यूं ही सराहते रहिए व्हाट्सएप पर. तो चलिए मिलकर सुनते हैं ये गाना, आपके लिए आ रहा है खुद गर्ज फिल्म से.

0: ऑलराइट दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। दैट गोज़ बियॉन्ड द सॉन्ग, कह सकते हैं ना कि एक वॉइस आइडेंटिटी है उनके अंदर, एक ऐसा जज्बा जो आपको हर बार एक सस्टेन्ड और हाई नोट्स पर, हाई पिच पर दिखेगा। ए रेयर गिफ्ट दैट मेड हिम स्टैंड आउट अमॉन्ग हिज कॉन्टेम्प्रेरीज। और वर्सेटैलिटी की क्या बात करें, और कितना खूबसूरत सा ये गाना है कि हाई पिच पर रिकॉर्ड हुआ। 80s और 90s की धुनें थी अनडाउटेडली आपके आ जाने से। खुद गर्ज फिल्म 1987 में राकेश रोशन ने डायरेक्ट की थी, फिर जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा और नीलम, और फिर राजेश रोशन ने इसकी मौसिकी दी और इंदिवर ने बोल लिखे। मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की जोड़ी। खुद गर्ज दरअसल एक स्टोरी है दोस्ती, बिट्रेयल, रिकन्सिलिएशन की। द फिल्म मार्क राकेश रोशन डायरेक्टोरियल डेब्यू एंड वॉज अ कमर्शियल हिट। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हिट रही वो थी ये गाने की तारीफें। तो दोस्तों, आपका ये जो अनजाना सा जो सफ़र महसूस कर रहे हैं आप, तो उसको जाना पहचाना हम बना रहे हैं यहाँ पर रेनबो FM पर। आपके आ जाने से सिर्फ एक डांस नंबर नहीं, ये 80s की एक तारीख है जो मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ ने ताकत दी और खुद से लिखी। उनके गाने हमें याद दिलाते हैं कि प्लेबैक सिंगर्स ही सिनेमा की धड़कन होते हैं। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए FM रेनबो 101.9 पर। मोहम्मद अजीज़ की सेलिब्रेशन जारी है, यह है आपका अपना शो नमस्ते हेलो आदाब। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मिलकर हम सुनते हैं हमारे दूसरे नगमे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके लिए रहेगा हमारा दूसरा गाना।
1: మీరు రిటైర్మెంట్ కి సిద్ధంగా ఉన్నారా? మీరు జీవితంలో ఏ దశలో ఉన్నప్పటికీ పదవి విరమణ అనివార్యం. ప్రణాళికతో మీ భవిష్యత్తుకు ధీమా. యూటీఐ పెన్షన్ ఫండ్ వారి ఎన్పీఎస్ అనేది PFRDA చే నియంత్రించబడి పన్ను ఆదా చేసే మార్కెట్ తో అనుసంధానం కలిగిన ఉత్పత్తి. 4 లక్షల కోట్లకు పైగా ఏయుఎం నిర్వహణ, పాన్ ఇండియా ఉనికితో దీర్ఘకాలిక వృద్ధి. యూటీఐ పెన్షన్ ఫండ్ తో పదవి విరమణకు సిద్ధంగా ఉండండి. పెన్షన్ ఫండ్లు మరియు సెక్యూరిటీల్లోని అన్ని పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి.
2: ईरानी चाय,
3: बन मस्का,
2: हैदराबादी बिरयानी,
3: टंगड़ी कबाब,
2: कुर्बानी का मीठा,
3: शहदूद मलाई,
2: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
3: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड.
2: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
3: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9.
2: इट्स नॉट जस्ट फूड,
3: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन.
2: जश्न ए हैदराबाद.

All right, another very beautiful track, राम लखन. वाकई क्या फिल्म थी और क्या गाने थे. बात तो ऐसी है कि 1989 में ये राम लखन फिल्म आई. सुभाष घई ने डायरेक्ट की थी. अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, डिम्पल कबाड़िया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी, आनंद बख्शी के बोल और मोहम्मद अजीज की आवाज़. राम लखन इज़ अ फैमिली ड्रामा बिटवीन टू ब्रदर्स. राम जैकी श्रॉफ के रोल में और ड्यूटीफुल पुलिस ऑफिसर हैं वो. लखन अनिल कपूर थोड़े मिसचीवियस है लेकिन ही इज़ द यंगर ब्रदर. द फिल्म ब्लेंडेड एक्शन कॉमेडी रोमांस बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ द 80s है ना. तो राम लखन जो है असल में एक अनिल कपूर की सिग्नेचर सॉन्ग कह सकते हैं. ये गाने को देखकर मोहम्मद अजीज ने बूमिंग वॉइस में लखन की आइडेंटिटी को ऐसे प्लेफुल, चीकी और खूबसूरत बनाया कि मैं क्या कहूँ. बहुत ही शानदार सा गाना है और द सॉन्ग पॉपुलैरिटी वॉज इमेंस एंड ऑडियंसिस वर चीर इन थिएटर्स व्हेन दे You know, began to see Anil Kapoor himself performing at the live events. Anil Kapoor और मोहम्मद अजीज़ का एक कोलाब्रेशन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की वजह से एक लेजेंडरी ट्रैक बनकर उभरा. अ फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिनर्जी बिटवीन एक्टर, सिंगर एंड कंपोजर. है ना कमाल की बात. तो दोस्तों, माई नेम इज़ लखन सिर्फ एक गाना नहीं, एक जवानी है, शरारत है, ताकत का जश्न है जो अजीज़ साहब ने बेमिसाल आवाज से जिंदा किया, जिंदा रहेगा. आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए FM रेनबो आकाशवाणी हैदराबाद पर. मोहम्मद अजीज की यादों का सफर जारी व सारी है. यह है आपका अपना शो नमस्ते हेलो आदाब. आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा. आप तक आ रहा है मोहम्मद अजीज की आवाज.

एक और खूबसूरत सनक माँ आपने सुना दयावान फिल्म से, फिरोज खान ने डायरेक्ट की थी, विनोद खन्ना, फिरोज खान, माधुरी दीक्षित, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसिकी, आनंद बख्शी के बोल और सिंगर मोहम्मद अजीज़। दयावान दरअसल एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी, एक बेनोविलन डॉन की, प्लेड बाय विनोद खन्ना, हु राइजेस फ्रॉम पार्टी टू पार विद स्ट्रगलिंग एंड कहीं ना कहीं मोरालिटी और इश्क की जो दास्तान है वो यहाँ से लिखी गई। द फिल्म इज़ रिमेम्बर्ड फॉर हिज इंटेंस परफॉर्मेंसेस एंड बोल्ड स्टोरी टेलिंग। मोहम्मद अजीज़ का क्या कहना, ही हैज़ द एबिलिटी टू इन्फ्यूज़ पेन वल्नरेबिलिटी इन टू हिज वॉइस। तो कहीं ना कहीं वर्सटैलिटी नज़र आती है, एक अनफॉरगेटेबल इमोशन है उनके अंदर और कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन कर लेते हैं आसानी के साथ। इमोशनल रेंज है और रिकग्निशन भी है और आसानी से वो ढल जाते हैं किसी भी एक्टर को लेकर, वो एक्टर को जहन में रखते हुए शायद आवाज़ देते हैं। अजीज़ साहब का जो करियर है हमेशा हमें रिमाइंड करता है कि प्लेबैक सिंगर्स जो हैं वो एक इमोशनल बैकबोन तो रहे ही हैं, है ना, कमाल की बात। तो आइए उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक से कुछ

0: जानने की कोशिश करते हैं, तो कहाँ पैदा हुए, क्या नाम असल में उनका था। तो मोहम्मद अज़ीज़ जो कि उनका नाम है बॉलीवुड में, वो पैदा हुए सैयद मोहम्मद अज़ीज़ उन नबी उनका नाम है, 2 जुलाई यानी आज के दिन, लेकिन सन था 1954 को पैदा हुए, और बहुत ही एक्टिव रहे। ऑल्सो नोन एज मुन्ना के नाम से भी मशहूर हुए, और इंडियन मल्टी लिंगुअल प्लेबैक सिंगर हैं, और ज़्यादातर उन्होंने बॉलीवुड में काम किया, फिर उड़िया में भी कुछ गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए, बंगाली फिल्मों के लिए भी उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए। कम से कम उन्होंने 20,000 गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें से भजन भी है, और उड़िया हिंदी बंगाली सब मिलाकर सूफी डिवोशनल सॉन्ग्स भी उन्होंने रिकॉर्ड किए। तकरीबन 10 जबानों में, हिंदुस्तान की 10 जबानों में उन्होंने अपने सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए। सो ही मेड हिज फर्स्ट अपीयरेंस इन फिल्म्स इन द ओडिया फिल्म टाइटल जागा हटारे पागा, डायरेक्टेड बाय मोहम्मद मोहसिन, एंड द सॉन्ग रूपा साग तीरे सुना काहिया, एंड लेटर ही सैंग मोस्ट नंबर सॉन्ग्स इन ओडिया एंड ऑलीवुड जिसे कहते हैं। सिद्धांता महापात्रा के लिए उन्होंने काफ़ी गाने गाए। लेटर ही अपीयर्ड विद द हिंदी फिल्म अंबर में भी वो रहे हैं, एंड हिज टू प्रोमिनेंट सॉन्ग्स इंक्लूडिंग मर्द टांगे वाला, जिसे कंपोज किया था अनु मलिक, आपने वो गाना सुना, और ये काफ़ी शानदार रहा। ढेर सारे कलाकारों के साथ उन्होंने बॉलीवुड में काम किया 80s और 90s में, जिनमें लता मंगेशकर, आशा भोंसले, चित्रा, सुलक्षणा पंडित, विजयता पंडित, उषा मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, एस जानकी, अलका याग्निक, सलमा आगा, हेमलता, सपना मुखर्जी, चंद्रानी मुखर्जी और पूर्णिमा के अलावा सारी का ढेर सारे ऐसे कलाकार हैं जैसे अलीशा चिनाय एंड सो ऑन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपके लिए रहेगा मोहम्मद अज़ीज़ का एक और नगमा। स्टे ट्यून।
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ ను పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
2: ఇరానీ చాయ్,
3: బన్ మస్కా,
2: హైదరాబాదీ బిర్యానీ,
3: టంగ్ ది కబాబ్,
2: కుర్బానీ కా మీఠా,
3: షహదూద్ మలాయ్,
2: హైదరాబాద్ ఇస్ అ గ్రాండ్ బఫే
3: అండ్ ఎవ్రీ డిష్ హ్యాస్ అ స్టోరీ వెయిటింగ్ టు బి టోల్డ్.
2: ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వై జష్నే హైదరాబాద్ ఇస్ యువర్ ఆఫ్టర్నూన్ ట్రీట్
3: ఫ్రమ్ 2 to 3 PM ఎవ్రీ డే ఆన్ ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.
2: ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫుడ్,
3: it's culture, history and flavor rolled into one.
2: Jashne Hyderabad.

दोस्तों आप सुन रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूँ आपका रेडियो मैन। जी हाँ, आज हम सुन रहे हैं एक ऐसे कलाकार को जिन्होंने बॉलीवुड में अपना लोहा मनवाया। उड़िया बंगाली फिल्मों के अलावा उन्होंने दूसरी भाषाओं में भी अपने गीत गाए और दुनिया को बहुत ही ज़्यादा तरीके से एक

दुनिया को बहुत ही ज़्यादा तरीके से एक ऐसे कलाकार का तोहफा दिया जिसे हर बार हम याद रखेंगे। जी हाँ, मोहम्मद अज़ीज़ को हम याद कर रहे हैं आज उनके जन्मदिन पर। 1954 में पैदा हुए मोहम्मद अज़ीज़, और 64 इयर्स में ही उनका निधन हो गया। 27 नवंबर 2018 को मुंबई महाराष्ट्र में वो इंतकाल कर गए। उन्होंने फिल्मी गाने, क्लासिकल गाने, भजन्स और सूफी गाने भी बहुत ज़्यादा गाए। तो उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक से हम बात कर रहे थे। अगर आप देखेंगे तो उनके पास ढेर सारे गाने हैं। ओरिजिनली रेस्टोरा सिंगर ऑफ गालिब बार, सो ही वेंट टू मुंबई अराउंड 1982 वेयर ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द हिंदी सिनेमा बाय अनु मलिक, द रिसिपियंट ऑफ टू अनसर्टन अवार्ड फॉर द बेस्ट प्ले बैक सिंगर, एंड हिज लास्ट फिल्म वॉज काफिला। एंड प्रायर टू दिस ही सैंग फॉर द फिल्म करण अर्जुन में भी उन्होंने गाना गाया। ही कोलैबोरेटेड विद अनुराधा पौडवाल एंड वॉज इमेंसली पॉपुलर इन 1980s एंड 1999। जी हाँ, तो करियर की अगर बात की जाए तो वो बड़ा लंबा चौड़ा उनका करियर रहा है। तो उनकी करियर के ताल्लुक से भी हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सुनते हैं एक नगमा जो है महबूब से। हमारे तो आपने सुन लिया है, तो एक और नगमा है आग और शोला से। तो वो हम नगमा आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आग और शोला का, एक लड़की जिसका नाम।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमापार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के

0: विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. Earlier today, Prime Minister Takaichi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi was also present on the occasion. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. The central government notified the Employees Provident Fund EPF Scheme 2026, replacing EPF Scheme 1952 as part of the implementation of Code on Social Security 2020. Under the new scheme, the mandatory EPF contribution remains unchanged at 12% of wages each from the employee and employer, while the existing 10% rate will continue to apply to notified establishments by the central government. The new scheme came into effect on the 29th of last month with its publication in the Gazette. India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, said, "A terrorist is a terrorist," and emphasized that the counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
1: The Delhi Police Special Cell has arrested 4 accused in a crackdown on ISI-sponsored interstate terror and arms network. Police said the accused were planning to carry out a terror activity in the national capital.

ऑल राइट कितनी खूबसूरत बैतबाजी है यहाँ पर एंड इक्वली कॉम्प्लीमेंटेड बाय मोहम्मद अजीज एस जानकी जो कि तेलुगु फिल्मों में इतनी बेशुमार उन्होंने गाने गाए और लोगों का दिल जीता। आखिरी रास्ता 1986 की फिल्म थी कि भाग्यराज ने इसे हिंदी में रीमेक किया था। तमिल फिल्म थी, अमिताभ बच्चन ड्यूअल रोल में, श्रीदेवी, जयप्रदा, अनुपम खेर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसिकी, आनंद बख्शी के बोल और मोहम्मद अजीज़ और एस जानकी। ये फिल्म दरअसल स्टोरी है एक आदमी की जो कि सोसाइटी से काफ़ी परेशान है और वो बदले की भावना लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन बाप के बदले की भावना को अब बच्चा कैसे बचाता है या फिर जो उसका लड़का है वो कैसे ये मॉरल डिलेमा और जस्टिस को साथ देता है, यही संघर्ष इस फिल्म में है। अमिताभ बच्चन के ड्यूअल रोल ने फिल्म को काफ़ी ड्रामेटिक वेट दिया था। म्यूज़िक बहुत ही सॉफ्ट है, इंटेंस है, रोमांटिक है, टेंडर है। गोरी का साजन एक ऐसा गाना है जो अजीज़ साहब की जो एबिलिटी है, रोमांटिक स्वीटनेस है, उसको एक एनर्जेटिक एंथम में तब्दील कर देता है। जैसे मर्द टांगे वाला आपने सुना माय नेम इज़ लखन, उसी किस्म के गानों में ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको याद दिला दें, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है हमारा एक ख़ास कार्यक्रम जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब और मेरा नाम है रेडियो मैन। गोरी का साजन हमने अभी गाना सुना, वो याद दिलाता है कि अजीज़ साहब की सिर्फ ताकत वाली आवाज़ नहीं, वो नरमी और मोहब्बत की आवाज़ भी है। उनकी वर्सेटैलिटी, उनके प्लेबैक सिंगिंग का एक जीता जागता सबूत और सुतून है। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए एफएम रेनबो पर, मोहम्मद अजीज़ की याद का सफ़र बल्कि यादों का सफ़र जारी है। ये है आपका अपना शो नमस्ते हेलो आदाब। तो अगला जो गाना है वो है ओ मेरे जाने बहार आ गया, अजूबा फिल्म से ये गाना सुनते हैं।

ऑलराइट, तो उस जमाने में एटीज में जो परंपराओं पर जो फिल्में बनती थी और साथ ही साथ घरेलू रिश्तों पर, जैसे घर होने दीजिए, बीवी हो तो ऐसी, ये फिल्म 1988 की फिल्म है, जेके बिहारी ने बनाई थी, फारूक शेख, रेखा, बिंदु, कादर खान और सलमान खान का डेब्यू फिल्म है ये। उसमें राजेश रोशन ने संगीत दिया था, इंदिवर ने बोल लिखे और मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल की शानदार सी जोड़ी। ये फिल्म असल में एक फैमिली ड्रामा थी, लव, रेस्पेक्ट और रिलेशनशिप पर, और इसमें रेखा का किरदार काफ़ी सराहनीय है। फूल गुलाब का वॉज वन ऑफ द रोमांटिक हाइलाइट्स ऑफ द फिल्म। जहाँ पर घर में इतना सब कुछ फैमिली ड्रामा चल रहा है, वहीं पर मोहम्मद अजीज़ की जो एबिलिटी टू डिलीवर स्वीटनेस एंड थ्रू हिज टेंडर वॉइस वॉज अमेजिंग, जिसे खूब बैलेंस किया था अनुराधा पौडवाल ने। या दोस्तों, फूल गुलाब का हमें याद दिलाता है कि अजीज साहब की आवाज़ रोमांस को और शायरी को एक साथ इम्तिजाज बना देती है। उनके गाने गुलाबों की तरह खूबसूरत हैं और साथ ही साथ खुशबू भी बिखेरते हैं, जो कभी मुरझाते नहीं हैं। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए एफएम रेनबो पर। मोहम्मद अजीज की यादों का सफर सिलसिला यहाँ पर जारी है। यह है आपका अपना शो रेनबो एफएम पर। नमस्ते, हेलो, आदाब, और मैं हूं आपका रेडियो मैन। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं त्रिदेव फिल्म से एक और खूबसूरत गाना। मैं चाहता हूं कि आप ये गाना सुनें, क्योंकि दो तीन गाने बहुत ही दिलकश हैं। और देयर वी गो।

0: एक और बहुत ही खूबसूरत सनकमा त्रिदेव 1989 में फिल्म आई थी, राजीव राय ने इसे डायरेक्ट किया था। सनी देओल मल्टी स्टारर फिल्म थी। जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह, माधुरी दीक्षित, सोनम और कल्याण जी आनंद जी की मौसिकी ने इसे चार चांद लगाए। आनंद बख्शी ने बोल लिखे, मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की आवाज़ में आपने गाना सुना। एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। अजीज़ की आवाज़ ने एक ऐसा रॉ पैशन क्रिएट किया कि परफेक्टली मैचिंग ड्रामेटिक टोन्स ऑफ द फिल्म। साउंडट्रैक इतना खूबसूरत था कि 80s में ये डिस्को बेयर्स, ट्रेडिशनल रोमांस और उनकी हाई लेवल एबिलिटी जो है, हाई एनर्जीज जो है वो डिलीवर करने की सलाहियत है, वो इमोशनली हमेशा चार्ज्ड अप रहते हैं, मेड द इंडिस्पेंसेबल टू कंपोजर्स ऑफ दैट एरा। है ना कमाल की बात। सो अजीज साहब का 80s और 90s का पीरियड एक बार हमेशा चार्ट बस्टर्स का दौर और साउंडस्केप कहलाता है। तो दोस्तों, मैं तेरी मोहब्बत में हमें याद दिलाता है कि अजीज साहब की आवाज़ रोमांस को भी उतनी ही ताकत और रोशनी देती है जितना उनके डांस नंबर्स देते हैं। उनकी वर्सेटैलिटी का क्या कहना, उनका सबसे बड़ा तोहफा तो उनकी वर्सेटैलिटी है। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए एफएम रेनबो पर, क्योंकि मोहम्मद अजीज की यादों का सफर यहाँ पर जारी है। नमस्ते, हेलो, आदाब। में 12:42 हमारे पास हो रहे हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके लिए रहेगा मैं प्यार की पुजारन मोहम्मद अजीज, सपना मुखर्जी और साथियों की आवाज़ में आप सुनेंगेगा। लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై

0: अनदर वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग हत्या, ये भी 1988 की फिल्म थी, कीर्ति कुमार ने डायरेक्ट किया था, गोविंदा नीलम, राजकिरण, अनुपम खेर ये कलाकार थे इस फिल्म में। बप्पी दा ने इस फिल्म की मौसिकी दी, इंदीवर ने बोल लिखे, मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति ने इसे गानों में, बल्कि सपना मुखर्जी और दूसरे भी हैं इसमें, और मैं प्यार की पुजारन इज़ अ डुएट सॉन्ग। तो यहाँ पर मोहम्मद अजीज़ की एबिलिटी को बैलेंस करती है उनकी इंटेंसिटी और टेंडरनेस, है ना कमाल की बात था। तो ड्वेल मास्टरी, ड्वेट मास्टरी पर वो काफ़ी जानिसार हैं। तो दोस्तों, प्यार की पुजारन हमें याद दिलाता है कि अजीज़ साहब की ताकत सिर्फ आवाज़ नहीं है, वो रोमांस और समर्पण यानी कि सरेंडर को भी आवाज़ दे सकते हैं। उनके ड्यूट सॉन्ग काफ़ी लेजेंडरी है, उनकी प्लेबैक सिंगिंग का एक सुतून बनता है। आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए, बने रहिए, मोहम्मद अजीज़ की यादों का यहाँ पर सफ़र है। उनके करियर के ताल्लुक से भी बातें होंगी, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके लिए रहेगा कुछ और ख़जाना मोहम्मद अजीज़ की गायकी से।
1: LIC యొక్క బీమా కవచ్ మీ జీవిత అవసరాలకు అనుగుణంగా మారుతూ ఉండే ఒక ప్యూర్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్, కీలకమైన లైఫ్ స్టేజెస్ లో మీ సమ్ అష్యూర్డ్ ని పెంపొందించుకునే అవకాశం, ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రీమియం పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ 100 సంవత్సరాల వరకు అందుబాటులో ఉండే లైఫ్ టైమ్ రిస్క్ కవర్ తో ఎల్లప్పుడూ సురక్షితంగా ఉండండి. LIC హర్ పల్ ఆప్కే సాత్.
2: Hey there, do you agree with me that some emotions cannot be explained? They can only be tasted. With a pinch of history, a spoonful of culture, and with a whole lot of flavor, every dish has a tale to tell. Of its roots, of its rich legacy, and about the goodness within it. From royal recipes to timeless streetside favorites, discover the stories behind your loved foods on Jashne Hyderabad on Rainbow FM at 2 p.m. every day. Jashne Hyderabad, where food is served on air.
3: పాటైనా
4: పాటైనా

ऐसे और कई अनगिनत गाने जहां पर सामाजिक फैमिली ड्रामा होता है, वहां पर मोहम्मद अजीज की आवाज एकदम परफेक्टली फिट होती है। प्यार का मंदिर 1988 में फिल्म आई थी कि बापैया ने बनाया था, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, निरूपा रॉय, शशिकला और ढेर सारे दूसरे अन्य कलाकार थे इस फिल्म में। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल को मौसीकी की जिम्मेदारी सौंपी गई। आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे। मोहम्मद अजीज ने बड़े ही कमाल के साथ दूसरों के साथ, जैसे सुरेश वाडेकर, उदित नारायण और दूसरों के साथ मिलकर ये गाना गाया। वही फैमिली ड्रामा, लेकिन कहीं ना कहीं ये गाना ये हमें बताता है कि डिवोशनल स्टाइल होने दीजिए, रोमांटिक ट्रैक्स होने दीजिए, ही हैज़ द एबिलिटी टू बेंड विथ ह्यूमन इमोशन। और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल को इतना ज़्यादा यकीन था कि मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में कि वो हमेशा की एक पॉपुलर जोड़ी रहे हैं, एंड दे हैव एक्सटेंडेड देयर यू नो एसोसिएशन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। और कहीं भी फैमिली फंक्शंस होते हैं और कल्चरल गैदरिंग्स होती है तो ये गाना हमेशा आ जाता है। तो म्यूजिकल डेप्थ तो है ही अजीज साहब के साथ, हम उनकी लेगेसी, उनके ताल्लुक से बात कर रहे हैं। तो चलिए हम ले दें छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद आपके लिए रहेगा हमारा कार्यक्रम हेलो रेनबो, जहां पर आप हमें मैसेजेस के जरिए बता सकते हैं कि आप अजीज साहब को कैसे जानते हैं या फिर कौन से गाने आपको पसंद है। सो स्टे ट्यून एंड स्टे टुगेदर, यू हैव ट्यून टू दिस वंडरफुल स्टेशन आकाशवाणी हैदराबाद ऑन FM 101.9 MHz।

बहुत ही खूबसूरत सगाना, अब दवा की ज़रूरत नहीं। लाल दुपट्टा मलमल का 1989 में फिल्म आई थी। साहिल चड्ढा, वेरली और वर्षा उज़ौन कर की ये फिल्म थी, और आनंद मिलन के मौसिकी में समीर ने इसके बोल लिखे थे, और अनुराधा पडवाल और मोहम्मद अजीज़ ने इस फिल्म में गाने गाए। द फिल्म वॉज रोमांटिक एंड इट वॉज ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर मैनी अदर थिंग्स, है ना। तो फिल्म के गाने अगर अच्छे हो तो शायद स्टोरी पर भी उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। द सॉन्ग ऑल्सो हाईलाइट्स यू नो हाउ अजीज़ एबिलिटी

जी हाँ दोस्तों, ये गाना बहुत ही दिलचस्प गाना है। इसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि सौदागर फिल्म जो थी, दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोयराला, विवेक, बहुत सारे अन्य कलाकार थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में ये आपने गाना सुना। तो 1:15 हो रहा है, तो आगे हम बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और अद्भुत गीत आपके लिए आ रहा है। मेरे सनम तेरे सर की कसम, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। सुनिए ये दिलचस्प सा गाना।

Another very hit song of Mere Sanam Tere Sar Ki Qasam mein ungynet gaane, 20,000 se zyada unhone gaane gaaye hain, aur he was involved with the music during his childhood. Later he started his professional music career, agar aap dekhenge. Aur Mohammad Aziz sahab ki khaas baat ye hai ki he started his professional musical career in films like Odia film title Manini under the great Odia music composer Radha Krishna and Raja Krishna Bhanja, and later he sang most number of songs in Odia and Hollywood actor Siddhanta Mahapatra. Later he appeared in Bengali film title Boma, and then he went to Mumbai for a better career opportunities in film industry, where he was introduced to Bollywood's best films like Ambar, जहाँ पर सपन और जगमोहन म्यूज़िक डायरेक्टर ने उनकी टैलेंट को पहचाना, और फिर वो दरअसल एक प्रोमिनेंट सिंगिंग रोल में तो नज़र नहीं आए फिल्म में, लेकिन उसके बाद उनको ब्रेक मिला मर्द फिल्म से. अनु मलिक ने उन्हें मौका दिया और मर्द टांगे वाला फिल्म बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई उसके बाद. So after this success of the song, he had several hits in 1985, such as Aate Aate Teri Yaad Aa Gayi, Jaan Ki Baazi Mein, and since then he was the most sought after singer in Bollywood. Dher sare music directors ke saath kaam kiya hai unhone, aur bepanaah gaane 250 se zyada Lakshmikant Pyare Lal sahab ke liye gaane gaaye hain. Unhone Lord Jagannath ke liye bhajan gaaye hain, जय हनुमान सीरीज में गाने गाए हैं. बिसाइड वर्किंग इन फिल्म्स, ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन स्टेज शोज इन इंडिया एंड कंट्रीज. एंड मोहम्मद अजीज साहब ने तकरीबन बड़े कलाकारों के लिए गाने गाए हैं, जैसे दिलीप कुमार, शमी कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह, हेमंत ब्रिजे, और लिस्ट गोज ऑन. तो आइए कुछ और गाने हम उनकी फिल्मों, बल्कि उनकी जो म्यूजिकल प्रेजेंटेशंस हैं वहाँ से लेते हैं. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज कमिंग योर वे इज दिस वन, आई वुड लव टू हैव तेरा बीमार मेरा दिल. और अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए ये एक दवा का काम करेगा.

एक के बाद एक बेपनाह खूबसूरत और दिलकश गाने आप सुन रहे हैं यहाँ पर हमारे इस स्टेशन पर, जिसका नाम है FM रेनबो और शो का नाम है हेलो रेनबो। जी, हमारे पास कुछ मैसेजेस भी आए हैं, कुछ लोग हमसे अपना जो हाल है वो साझा कर रहे हैं, तो कुछ शायरी भी लिखकर भेजी है। अशोक साहब ने सुल्तान शाही से भेजा है, हौसला हौसले ज़िंदगी के देखते हैं, चलो कुछ रोज़ जी के देखते हैं, बारिश से तो प्यास बुझती है, आओ अब तो जहर पी के देखते हैं। अरे बाप रे, ये गुस्ताखी बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अपना जहर पीने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसी तरह हमारे पास अश्विन भाई खोटी से मैसेज करते हैं, वो लिखते हैं कि हाल पूछ लेने से हाल भले ही ठीक न हो, पर तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई तो अपना है। बेशक आपके तो काफ़ी चाहने वाले हैं, और थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इन अश्विन भाई। और उन्होंने खुदगर्ज गाने की फरमाइश की थी, खुदगर्ज का गाना हमने पहले ही प्ले किया था, वो पहला जो नमस्ते हेलो आदाब का एडिशन था उसी में हमने प्ले किया था। बट एनीवेज, थैंक यू फॉर राइटिंग। खतरों के खिलाड़ी 1988 की फिल्म थी, टी रामाराव ने इसे डायरेक्ट किया था, धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे और माधुरी दीक्षित की फिल्म, राजेश रोशन की संगीत में ये फिल्म आई थी, इंदिवर ने इसके बोल लिखे थे और मोहम्मद अजीज़ ने इसे गाया था। तो अजीज़ साहब की आवाज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई शायर कोई पागल जो है ना, रिफ्लेक्टेड द प्लेफुल मैडनेस ऑफ लव एंड ऑल्सो द थीम ऑफ द फिल्म। अजीज़ साहब डिलीवर्ड विथ कन्विक्शन अलॉन्ग विथ अदर यू नो आर्टिस्ट। तो डुएट पार्टनरशिप, प्लेबैक सिंगिंग, वर्सिटैलिटी, कल्चरल इम्पैक्ट, ढेर सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, कोई शायर कोई पागल हमें याद दिलाता है कि अजीज़ साहब की आवाज़ रोमांस को शायरी और शरारत और यादों में बदल देती है। उनके डुएट्स अलका याग्निक के साथ बॉलीवुड के सबसे प्यारे खजाने हैं। तो आप बने रहिए FM रेनबो 101.9 पर, मोहम्मद अजीज़ की यादों का सफ़र कुछ और पल के लिए हम बढ़ा देते हैं। और क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपको ये गाना ज़रूर प्ले कर कर सुनाऊँ, ऐ वतन तेरे लिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और आपको उम्मीद है कि पसंद आएगा। और लीजिए, आपके लिए आ रहा है ये अद्भुत गाना,

दोस्तों आप सुन रहे हैं मोहम्मद अजीज की आवाज़ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नंबर। लेकिन आपको बता दें कि व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई ऑन 27 नवंबर ही कोलैप्स्ड एट मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहीं से उन्हें नानावती हॉस्पिटल लेकर जाया गया और ट्रीटमेंट के दौरान उनका इंतकाल हो गया। 27 नवंबर 2018 को वो इस दुनिया से रुखसत हुए और सिर्फ 64 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। आज हम इस अजीम कलाकार को इस शो पर याद कर रहे हैं, मोहम्मद अजीज साहब को। मेरा भी वक्त हो चुका है तो मैं भी चलता हूँ, और चलते चलते आपके लिए कुछ और गाने यहाँ पर हैं। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, ये इस गाने के बाद आएगा, तो आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए FM रेनबो पर। दिस इज़ योर रेडियो मैन टेकिंग लीव। हास्ता ला विस्ता बेबी, अडियोस अमिगोस, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय एंड गुड आफ्टरनून।

शुक्रिया नवाजिश, शुक्रिया। आज की महफिल की पहली गजल पेश खिदमत है, शायर हैं डॉक्टर बशीर बदर।

0: 102.6 नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। आपके साथ है शाहिद और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से मैं कुमार ऋतुराज सबको जय हिंद।
0: जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं। श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन एसएसबी के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने। सर अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे लिसनर्स के साथ, कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया।
1: ये सफ़र तो काफ़ी मेरा शानदार है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है। ऑफिसर से लेकर जितने आपके सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी कार्मिक हैं, सबको इसमें मेहनत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें रहता है। भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जी
0: तो सर, जैसा आपने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन सर आपने इन सब से हट करके अपनी पहचान जो बनाई, एक टैक्टिकल लीडरशिप, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और मैदान जंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप जाने गए, इसीलिए आपके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहे, तो उनके बारे में बताइए।
1: जी, ऑपरेशन इसलिए सक्सेसफुल रहा कि हम जब 32 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर बेला में जब पोस्टेड थे, हमारे कमांडेंट श्री दीपक सर थे और सुमित जोशी सर डीआईजी थे जो अभी आईजी हैं, और आईपीएस संजय सर थे वो पटना फ्रंटियर में थे। उनका इन लोग का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर, हमारे काम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था, हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें। तो इसीलिए ही ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा, जो भी ऑपरेशन हुआ।
0: जी, यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर मैं ठीक बता रहा हूँ?
1: जी बिल्कुल ठीक बहुत
0: बता जी रहे हैं। तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने जवानों के साथ डटे भी रहे, उन्हें लीड भी करते रहे। और हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम, क्या वो मंजर, वो सिचुएशन हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर सकेंगे?
1: ये वाल्मीकि नगर रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी टफ लोकेशन है। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके थे 2-3 बार, लेकिन असफलता ही हाथ लगा था। लेकिन मेहनत बोला जाता है, करने से सफलता तो एक दिन आता ही आता है। तो इसमें

0: में चार खूंखार जो नक्सली थे, एक तो पीलूट ब्यूरो के थे, उनके साथ जबरदस्त मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ के दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजरी भी हुआ, उधर से भी बहुत जबरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ GPS वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है। और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ ऑपरेशन, काफ़ी देर तक गोलीबारी चली, इसका परिणाम हुआ कि चार नक्सली उसमें
1: जी,
0: मारे गए।
1: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफ़ी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे वो बहुत खतरनाक वाले नक्सली थे। तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको, तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, आपके जवानों को, आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
0: जी, उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही। जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुँचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुँचे नहीं, तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
1: तो
0: तो
1: सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
0: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए, तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ
1: जी,
0: इसमें। जी,
1: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में, और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
0: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
1: अच्छा
0: उसमें हम लोग आराम से अपने DIG महोदय, IG महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से डिस्कस कर सकते हैं,
1: जी,
0: और छोटा छोटा बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का परिणाम है कि हम लोग का कैजुअलिटी कम से कम होता है, और हमारा ऑपरेशन 100%, नहीं तो 99% हमारा सक्सेस होता है।
1: जी
0: जी
1: तो आपने जब इस मिशन के लिए, आपको ये तो अंदाजा होगा कि ये कितना खतरनाक मिशन है, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी कामयाबी के लिए और उन आतंकियों से आजादी के लिए, मतलब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली।
0: आपको बताना चाहते हैं, अगर उस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं होता तो सुरक्षा बल के लिए बहुत घातक परिणाम भविष्य में होने वाला था, क्योंकि हमारे
1: जी
0: वाल्मीकि नगर में हमारे भी बटालियन, वहाँ 2 बटालियन कार्यरत हैं, हमारे कार्मिक उसी रूट से आना जाना करते हैं,
1: अच्छा
0: और फॉरेस्ट के भी जो कर्मचारी हैं कार्मिक है, वो भी जाते हैं, स्टेट पुलिस के STF भी जाती जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर अगर ये नहीं होता ऑपरेशन। तो इस
1: जी
0: ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहां से खत्म हो गया इस ऑपरेशन के बाद, उनकी कमर टूट गई।
1: क्या बात है सर।
0: जी
1: तो यानी कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिर बाद में फ़ायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
0: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था, बाहर
1: जी
0: से रिक्रूट करते थे नौजवान युवक को, भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको
1: जी
0: बहला फुसला के वहाँ बुलाते थे, और देश के विरुद्ध
1: जी
0: गतिविधियों में उसको लगाते थे, और उसे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
1: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी, तो फिर वो तो फिर एक बहुत ही एक सिचुएशन ही बदल गई वहां पर, आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाए आप घायल अवस्था में भी?
0: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजरी भी होता है तो उसमें पता नहीं
1: जी
0: चलता है, और उस समय आदमी उस जोश और जुनून में कुछ
1: जी
0: भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहता है
1: बिल्कुल।
0: उसमें।
1: और
0: जी
1: जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
0: इसमें हमारे ऑफिसर, और ऑफिसर में हमारे नरपत सर डिप्टी कमांडेंट थे, उनका
1: जी
0: अहम योगदान है, और जो कार्मिक लोग थे बहुत, उनका अहम योगदान था इसमें।
1: जी
0: एक जी,
1: तो
0: बहुत बहादुरी के साथ वो फायर करते रहे दोनों साइड से, काउंटर फायर बहुत जबरदस्त भारी
1: जी
0: गोलीबारी का बौछार हुआ दोनों साइड से। जी,
1: सर, हमें ये भी हम यहाँ जानना चाहेंगे जैसे हमारे लिसनर्स, कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके, वो अंदाज़ा उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी बैटल सीन, कोई भी वॉर सीन या कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है, तो क्या मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
0: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह उन लोगों को हम लोग परास्त करें, कितना से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है उनको कितने से जल्दी
1: खात्मा करें।
0: खात्मा करें
1: जी, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो

0: वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि एक तो ये कि मिशन तो है, लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है, तो वो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
1: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सैट टीम हमारा था,
0: जी
1: उसमें जितने भी कार्मिक थे, डेडिकेटेड कार्मिक थे, डरने का कोई सवाल नहीं था। गोलियों को
0: जी
1: बौछार आते भी रहेगा तो वो खड़ा होकर गोली चलाने वाले सारे कार्मिक इसमें थे।
0: क्या
1: डर
0: बात है
1: नाम
0: सर।
1: का इसमें कोई चीज़ ही नहीं था।
0: जी
1: जी जी
0: तो सर
1: जी
0: यही हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो, जिसको बोलते हैं ना, कि बस डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। तो सर आपको जो स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिले हैं और आपको जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो मेडल है उससे भी नवाजा गया, उस इसी ऑपरेशन के बाद ही उससे नवाजा गया आपको, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टीजियस अवार्ड आपको 2 बार दिया गया है, इसके बारे में बताइए।
1: जी, एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला,
0: जी
1: गैलेंट्री अवार्ड मिला। उसके बाद फिर एक और बिहार में लखीसराय में इंकाउंटर हुआ था जिसमें 2 नक्सली मारे गए थे, उसमें
0: अच्छा
1: भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे, तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला। तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है।
0: जी,
1: जी
0: और
1: जी
0: 2 बार आपको मिला ये,
1: 2 बार गैलेंट्री
0: और
1: मिला।
0: उसके
1: जी
0: अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, तो वो मेडल भी मैं 2-4 देख पा रहा हूँ, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स, आपके जो अवार्ड हैं वो ज़्यादा हैं।
1: आपको तो बताया ही कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन
0: जी
1: काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
0: एग्जैक्टली, लेकिन वही है कि
1: जी
0: लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको 2 बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम एनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहाँ आप पहुँचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला एनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ। उसमें 50 केस का वांटेड, आपको बताना चाहेंगे,
0: 50
1: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ

0: और हमारी टीम,
1: अच्छा
0: उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था
1: ओके
0: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे। तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ,
1: जी
0: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी हुआ था। उसमें बहुत
1: अच्छा
0: सारे नक्सली पर्चे वगैरह बरामद हुए हुए थे उसमें। जी
1: जी तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर था, ये आपका पहला इनकाउंटर था
0: ये, हाँ, मेरा ये पहला इनकाउंटर था।
1: और
0: जी
1: वो आपने बताया कि वो 50 केसेस में वांटेड था जिसको आपने मार गिराया
0: हमने
1: एसटीएफ के
0: नहीं,
1: साथ मिलकर
0: हमारी
1: के।
0: टीम और
1: जी
0: हम, हाँ, सब मिलके।
1: एसएसबी
0: जी
1: की
0: जी जी
1: टीम जिसको आप लीड कर रहे थे और एसटीएफ की टीम ने मिलकर के।
0: कुछ कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई कमांडर ही किसी को मारता है, पूरी टीम का
1: जी
0: वर्क होता है। जी जी
1: बिल्कुल
0: जी जी
1: बिल्कुल
0: जी जी
1: बिल्कुल
0: ये
1: आपने ठीक
0: टीम
1: कहा
0: वर्क है।
1: जी।
0: जी
1: तो जो अब ऑपरेशन के आपने जैसे जिक्र किया, तो इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी।
0: हाँ, एक्चुअली जैसे ही मेरा नक्सल में जो टेन्योर मेरा चलना
1: जी
0: स्टार्ट हुआ, जब पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं, हर एक जो भी वर्दीधारी हैं सबके मन में भावनाएं रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले। सबका सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमको
1: जी
0: ये सौभाग्य एसएसबी की तरफ से प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ एसएसबी का।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: और सर हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत करी, क्योंकि आपने पटना बिहार से बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने एसएसबी ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप, तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया।
0: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
1: अच्छा
0: जी जी जी हाँ,
1: तो
0: तो
1: ये जो जोश था ये बचपन से ही था आपके मन में के देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके।
0: जी जी वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए,
1: जी
0: फिर
1: तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड।
0: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था। परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने एसएसबी ज्वाइन किया, फोर्स में
1: अच्छा
0: ज्वाइन किया। जी
1: जी तो आपने स्कूलिंग के ज़माने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है।
0: हाँ बिल्कुल, स्कूल के समय से ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
1: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई।
0: हाँ, टेस्ट पास हुए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सोलोनाबाड़ी में स्टार्ट हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग के आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा आसाम में पोस्टिंग हुआ। तो वहाँ
1: अच्छा
0: भी एनडीएफबी के खिलाफ काम हम लोग किए, जो मेरी टीम थी उसके साथ।
1: अच्छा
0: हाँ, वहाँ फिर एनडीएफबी के एक कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे, वहाँ असम में। उसके बाद बहुत सारा मेरा
1: तो सर आपकी जो जी एक तो एसएसबी का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट।
0: हाँ,
1: जी
0: इंडो
1: तो
0: भूटान
1: आपका जो
0: बॉर्डर,
1: खास था वो इंडो नेपाल बॉर्डर का था।
0: इंडो नेपाल, इंडो भूटान बॉर्डर। फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग तो भूटान बॉर्डर पर हुआ था। उस समय
1: अच्छा
0: असम जल रही थी एनडीएफबी का, उससे
1: अच्छा
0: तो उसमें एनडीएफबी पर भी हम लोग काफ़ी काम किए थे। हमारे बटालियन ने एसएसबी बहुत अच्छा काम किए थी उसमें। उसमें एनडीएफबी कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एमुनेशन वगैरह, हथियार वगैरह भी पकड़ाया था। बहुत सारे सीजर हुए थे, नारकोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय। जी
1: अच्छा
0: हाँ,
1: तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया, जीडी। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
0: जनरल ड्यूटी। जी
1: जी
0: जीडी मतलब जनरल
1: तो
0: ड्यूटी। हाँ
1: ये जाहिर है ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीज़ें थी।
0: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए।
1: जी
0: हाँ, और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है, 4 साल का, 5 साल का ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद
1: जी
0: प्रमोशन मेरा हुआ। जी
1: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने सीटीसी सलोन बारी से आपने शुरुआत करी थी, यहां से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की।
0: सोलोनावाड़ी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ,
1: अच्छा
0: उसके
1: बेसिक
0: बाद,
1: ट्रेनिंग,
0: हाँ, उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
1: तो 23 बटालियन
0: हाँ,
1: असम में आपने
0: ट्वेंटी
1: शुरुआत।
0: थर्ड
1: अच्छा
0: थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहाँ से
1: अच्छा
0: शुरुआत हुआ। जी
1: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही।
0: हाँ, असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन गोसाई
1: थर्टी
0: गांव
1: फर्स्ट
0: में हुआ।
1: बटालियन
0: जी जी जी जी
1: अच्छा
0: जी
1: फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन यूपी में भी आप रहे।
0: हाँ, 32 बटालियन, उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफ़र 32 बटालियन हुआ, जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले

0: रोटेशन होता था,
1: अच्छा
0: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी वो रोटेट होके आ गई
1: अच्छा
0: असम में, आ गई हॉली में। जी
1: ओके। तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड हैं।
0: हाँ, 72 बटालियन सिक्किम युकसुंग में मेरी पोस्टिंग
1: जी
0: हुई है।
1: अच्छा, एक चीज़ सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग्स रहीं जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहाँ पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रह करके सिर्फ सिक्योर करना है।
0: जहाँ जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है
1: जी
0: उसमें मेरा
1: जी
0: कोशिश रहता है कि खत्म तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश रहता
1: जी
0: है। जी
1: जैसे आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में, तो वो एक
0: पचास
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
0: हाँ उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का, उसके पीछे एसटीएफ वगैरह भी लगी हुई थी।
1: जी
0: जी हाँ,
1: तो ये जो आपका
0: लेकिन
1: पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
0: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा, वो उस चीज़ को हम याद करते
1: अच्छा,
0: हैं। जी
1: तो
0: हाँ
1: ये सर जुलाई 2020 में हुआ था।
0: जी
1: जी तो इसको आप सबसे ज़्यादा याद रखते हैं?
0: जी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा, टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते, हर छोटे चीज़ से हर बड़े चीज़ में।
1: जी
0: जी जी जी
1: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
0: जी जी मेन तो आप सोर्स पर सारा चीज़ डिपेंड करता है, आपका जो
1: जी
0: सूचना देने वाला। आज भी के मेरा जो मानना है आज के समय में, कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन
1: जी
0: ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है।
1: यानी कि जो जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें
0: हाँ, जो
1: इन्फॉर्मेशन
0: इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, वो
1: जी मिल जाए।
0: टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है वो तो दूसरा चीज़ हो जाता है,
1: जी जी
0: उस पर उतना विश्वास नहीं। लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है, जो वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा। क्योंकि वाल्मीकि नगर वहाँ जहाँ था, वहाँ ना कोई टेक्निकल गजट पहुँचना संभव था, ना कुछ पहुँचना, ना आदमी पहुँचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
1: सर हम एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी कि अगर कोई SSB ज्वाइन करना चाहे, सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बता सकें तो?
0: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो आप ग्रेजुएशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है SSC के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
1: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
0: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है उसका फॉर्म, मार्केट में भी फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
1: अप्लाई कर सकते हैं?
0: अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं तो
1: जी,
0: आप
1: तो
0: अप्लाई कर
1: ग्रेजुएशन कम
0: सकते
1: से
0: हैं।
1: कम इसका क्राइटेरिया है।
0: हाँ, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया।
1: जी
0: जी
1: सर, हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड RJ साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल ऑफ बिलवड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली, सो आई पे माई ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्ट फेल्ट ऑबिसियंस टू देम माई सेल्फ। शंकर लोधे फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से। जय हिंद, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम। आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर। यस ऑफ कोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशंस के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए।
0: जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने हैं वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश
1: जी
0: की सेवा करते हैं। अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी
1: जी
0: देश विरोधी सूचना अगर आता है तो नज़दीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए।
1: क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी, अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं।
0: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा
0: जी
1: देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिलकर के ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं। एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार हैं ये, जैतपुर नई दिल्ली से। जय हिंद कह रहे हैं आपको।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से, प्लीज सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी। ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये।
0: जय हिंद, हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिल के काम करें, तभी देश का

0: तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिलकर के एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें। सर, आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब SSB ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को, आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
0: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया गोल्डम से, उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है।
1: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही आपने रिलेटेड चीज़ें,
0: फोर्स से ही मैंने जी।
1: आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर का भी कोर्स किया है सर, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: एक्चुअली ये हमारा कोर्स ग्वालदम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा ये जी।
1: अच्छा।
0: इसमें कैसे कैसे नक्सल से, कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
1: तो सर ये जो
0: वहाँ
1: फॉर्मल
0: टेक्निक
1: ट्रेनिंग
0: सिखाया जाता है
1: जी, जैसे SSB में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है, उसके अलावा ये भी वैसी ही कुछ ट्रेनिंग होती है और ज्यादा हार्श और ज्यादा टफ होती है?
0: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं
1: अच्छा,
0: खाना है, और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है,
1: ओके,
0: कैसे किससे बात करना है, क्या कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है अपने सीनियर पदाधिकारी से, नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है,
1: अच्छा
0: चलने
1: सर,
0: से लेके हर चीज़। और
1: अच्छा
0: उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना, उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल से
1: अच्छा
0: कैसे लड़ना है,
1: यानी कि
0: आतंकवादी से
1: पूरा
0: कैसे लड़ना है,
1: जी,
0: उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है जी।
1: पूरा टैक्टिक्स। तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके।
0: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें जी।
1: तो
0: जंगल में ही
1: आपने
0: हम,
1: जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरमेंट में अपने आपको ढालना होता है?
0: जंगल में रहना होता है, 1 लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है, ब्रश
1: अच्छा
0: भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया, फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है
1: तो
0: जी।
1: एक एक लीटर पानी में
0: 1 लीटर पानी में
1: और वो भी 72 घंटे?
0: 72 घंटे इस टाइप के ड्रिल, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको एकदम
1: अच्छा, तो
0: हाँ,
1: कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर ये?
0: ये ट्रेनिंग करीब 1 मंथ का होता है
1: 1 महीना?
0: जी।
1: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को, क्या तरीका होता है?
0: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगा हुआ, लगे रहना है साथ में, हो जाता है सारा चीज़। मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है।
1: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ, वो सब भी कंट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सब का भी योगदान रहता है?
0: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते
1: अच्छा,
0: हैं
1: यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से
0: जी
1: हमेशा
0: जी
1: भरे
0: जी
1: रखते हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन
0: जोश से
1: सर इसको
0: भरे।
1: थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा, मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे, तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया, और आपने कहा कि सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल,
0: जी, हाँ तो हो जाता है
1: तो कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें।
0: उसमें क्या होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का मेरा,
1: अच्छा
0: तो हाँ तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका
1: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो कैसे रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
0: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है,
1: अच्छा,
0: अचानक अचानक सब चीज़ होता है। आप
1: पहले से
0: खा
1: नहीं बताते हैं?
0: नहीं खाना बना रहे हैं, आप पर कैंप अटैक हो गया।
1: ओके, एक तरह से ड्रिल ड्रिल।
0: हाँ ड्रिल ड्रिल हाँ,
1: अच्छा,
0: ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है जी।
1: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी
0: अगर
1: जीदारी के साथ।
0: मेरा कहना है, ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस
1: जी
0: अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी। एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
1: यानी कि एक
0: हाँ
1: भी कोई अगर कमजोर पड़ा तो
0: कमजोर
1: पूरी
0: पड़,
1: टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी,
0: हाँ तो पूरी टीम को एक जैसा लाया जाता है ट्रेनिंग
1: मोटिवेटेड
0: का।
1: रखने।
0: हाँ ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंड, फिजिकली मेंटली पूरा एक टीम वर्क के जैसा, टीम के रूप
1: जी
0: में ही उनको ढाला जाता है।
1: सर, अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाई चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं है उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
0: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहाँ भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कहीं भी
1: जी
0: पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, जी हाँ, और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुक

0: रखते हैं।
1: जी
0: ऑपरेशन काफ़ी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ
1: जी
0: होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे।
1: जी
0: जी
1: आपके आपके सर कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेज किए हैं। रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है।
0: जी जी जी जी
1: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
0: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डरों को
1: अच्छा
0: करना है, जी उसके उसके
1: अच्छा
0: उसके बारे में है।
1: यानी कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीजें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आप को मजबूत बना सकें वो भी आपने किया हुआ है।
0: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना,
1: जी
0: उसके
1: जी
0: वो उसमें एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: जी
1: सर, ये जो अब जैसे हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया, तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है या आपको मजा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
0: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो
1: जी
0: खतरनाक हो, एडवेंचर लीजिएगा तो मज़ा
1: तो
0: आएगा।
1: आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया,
0: मैंने
1: मतलब?
0: तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब इंजॉय ही
1: अच्छा
0: किए।
1: सर,
0: जी
1: यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, आपको मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूं,
0: जी
1: राजवीर का यहां पर मैसेज आया है, और ये बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूं, प्लीज राज सर को मेरा जय हिंद और फॉरवर्ड करें मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया है। सर आपका कोई रिएक्शन?
0: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
1: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है, नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जय हिंद।
0: आपको भी जय हिंद।
1: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से, सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए।
0: जय हिंद आपको भी।
1: आपकी सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात। हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और इनकी इतनी एडवेंचर्स और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पूरे देश में 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में। मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतु राज सशस्त्र सीमा बल से और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर क्या कहना है आपका इस बारे में जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं।
1: मैं बार बार कहता हूं कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए
0: जी,
1: जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी। ये सर ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफ्रेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
0: अच्छा।
1: में जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है,
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस के लिए
1: अच्छे काम करते हैं, उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा।
0: ओके।
1: उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।

0: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1 स्टार और 2 स्टार वेरिएंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजी डिस्क चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी
1: टीम के साथ मिलके, हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो
0: जी
1: नाम हमेशा रोशन रहे।
0: रोशन रहे, क्या
1: जी
0: बात है
1: जी
0: सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलके हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिलकर काम करेंगे।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए, मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर, जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी, सशस्त्र सीमा बल से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर्स शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीश पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, जय हिंद, भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं, सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके SSB में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये हैं सर सुशील कुमार नई दिल्ली से,
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
1: जय हिंद आपको भी।
0: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं, इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर कि वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं, और ये भी बताएं कि SSB के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा तो एक बार और उनको बता दें कि क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं, और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुँचाएं अपने दिल की बात।
1: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो UPSC के थ्रू फॉर्म आता है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं।
0: जी, और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं, तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
1: जी देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
0: बिल्कुल, सर एक मैसेज है।

0: जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते आरजे सर। मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूं, उनकी उनकी सभी उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
1: जय हिंद आपको भी।

तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य

0: उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए बलिदान के, हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स। आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा। आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स। आप सुनते रहें रेनबो दिल से दिल तक।
2: तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM रेनबो 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: नारंग प्रोग्राम सुनने वाले सभी सामईन को मंजूर का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज के नारंग प्रोग्राम में पेश है हरफ ताबिंदा, मुशायरा और गीत सुरीले का तजा में कुछ सुरीले गीत। और प्रोग्राम के आखिर में पेश होगा पयाम शब। आइए दोस्तों, प्रोग्राम नारंग का आगाज़ करते हैं हरफ ताबिंदा से। पेश कर रहे हैं एम ए हाई।
1: समय निक्रम, इंसान की ज़हनी सलाहियतों से दुनिया दिन ब दिन मुस्तफीद हो रही है। बेहतर माहौल और ज़हनी सलाहियत की वजह से नए नए इजादात सामने आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं दुनिया डिजिटल हालत में आ चुकी है। माहौल और सोहबत ही इंसान की ज़िंदगी को बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल अदा करता है। इंसान जिस सोहबत और माहौल में रहता है वही उसका नक्श कदम बनता है। उसके सोच का रुझान ऐसा बन जाता है जो न सिर्फ उसकी शख्सियत को निखारता है बल्कि ज़हनी सलाहियतों को भी वसअत बख्शता है। बेहतर माहौल और सोहबत ही की वजह से इंसान में सब्र, पाकीज़गी, सच्चाई और अखलाकी बनावट परवान चढ़ती है, जिसके लिए वालिदैन पर लाजिम है कि वो अपने बच्चों की शख्सियत को निखारें और उन्हें अच्छी सोहबत में रखें ताकि बच्चे में बेहतर राह हमवार हो सके। चुनांचे फितरत का क़ानून है कि एक इंसान की शक्ल दूसरे से मुख्तलिफ होती है। उसकी फितरत, इकदार और रुझानात यकसा नहीं होते। विरासत इंसान को फितरी क़ुव्वतें अता करती हैं और माहौल उसे उन ताकतों की तकमील के लिए सहूलियात फराहम करता है, जबकि समाजी माहौल का भी इंसान की शख्सियत पर गहरा असर होता है। इंसान अपना किरदार खुद बनाता है और किरदार साजी के लिए उसे हालात को साजगार या मजबूत बनाने की ज़रूरत नहीं बल्कि खुद इरादियत की ताकत को इस्तेमाल करना लाजमी होता है। हमारे अल्फाज हों या अमल, हर जगह मुस्बित सोच का होना अच्छी शख्सियत की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। मुस्बित सोच खुद एतमादी को बढ़ाती है और शख्सियत को निखारती है। ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन मुस्बित सोच रखने वाला हमेशा सही रास्ते की तरफ गामजन रहता है। अच्छी सोहबत और माहौल काबिलियत को साबित करने के लिए एक संग मेल साबित हो सकता है, इसलिए हर वक्त और हर उम्र में बेहतर माहौल और अच्छी सोहबत में रहना बेहद ज़रूरी है।

0: अभी आप सुन रहे थे हरफ ताबिंदा, तहरीर व पेशकश थी एम ए हाई की। सामईन अब आइए सुनते हैं मुशायरा। आज के शुरकाए मुशायरा है ख्वाजा फरीदुद्दीन तैयबा शाह कादरी मोहम्मद रहमतुल्ला जैन, सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद गनीउर्रहमान शाहिद अदीली और गाजी सैयद नूरुल्ला फारूकी। आइए सुनें।
1: मोज़ेस सामेन इकराम, सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं डॉक्टर सादिक आपसे मुखातिब हूँ। आज इदारे अदब सादिक के ज़ेर एहतमाम ऑल इंडिया रेडियो एक ज़माने के बाद मुशायरा मुनक़िद हो रहा है और यह अदब सादिक का 506वां मुशायरा है। इस मुशायरे में आज हमारे पास हज़रात के वो नगीने हैं, वो शोरा इकराम हैं जो तमाम के तमाम सिवाय मेरे उर्दू एकेडमी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड याफ्ता हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि इनके ज़ोर क़लम और ज़्यादा करे। तो आइए सबसे पहले हम मुशायरे का आगाज़ करते हैं क़ारी तैयब पाशा क़ादरी साहब के कलाम से कि वो अपने कलाम को पेश करें।
2: एक मुकम्मल गज़ल से पहले एक मतला एक शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त होगा। अश्के गम जब मचलने लगते हैं,
1: अश्के गम जब मचलने
2: लगते हैं, हीरे मोती उगलने लगते हैं। अश्के गम जब मचलने लगते हैं, हीरे मोती उगलने लगते हैं। जाल बुनती है माँ दुआओं का, जाल बुनती है माँ दुआओं का, हम जो घर से निकलने लगते हैं। हम जो घर से निकलने लगते हैं, और नर्म गुफ्तार का कमाल है ये, नर्म गुफ्तार का कमाल है ये, संग दिल भी पिघलने लगते हैं, संग दिल भी पिघलने लगते हैं। चंद शेर गजल के हैं। दूर से सहरा को भी दरिया समझ लेते

0: शेर जो वार आप लोगों के हवाले ये, जो
1: अच्छा
0: वार कर रहा था हमारे कलाम पर,
2: जो वार
0: जो वार कर रहा था हमारे कलाम
2: कलाम
0: पर,
2: पर
0: हमने भी उस पे वार
2: वार
0: किया,
2: किया
0: क्या बुरा
3: क्या
0: क्या
3: बुरा किया।
0: जो वार कर रहा था हमारे कलाम पर, हमने भी उस पे वार किया
3: क्या बुरा
0: क्या बुरा किया। मख्ता अर्ज कर रहा हूँ कि सादिक चमन में दिल को तो ना बहला सका मगर, सादिक चमन में दिल को तो ना बहला सका मगर, नजारे बहार किया क्या बुरा किया, नजारे बहार किया क्या बुरा किया, दिल आप पर निसार किया क्या बुरा किया, उल्फत को इस्तवार किया क्या बुरा किया। हजरत गिरामी, अब फरीदुद्दीन सादिक के बाद अब आप आइए, एक धमाका खेज शायर को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अपने पेट को जरा जोर से पकड़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेट में हंसते हंसते बल पड़ जाए। और मेरी मुराद है जनाब शाहिद अदीली साहब से, मैं उन चार मिजाया मिसरों से उनको दावत कलाम देता हूँ कि कब तक ठंडी आहें भरतई, कब तक ठंडी आहें भरतई, दिल ही दिल में कब तक खुड़तई, कब तक ठंडी आहें भरतई, दिल ही दिल में कब तक खुड़तई, हसरत पूरी कर ले अपनी, हसरत पूरी कर ले अपनी, इतने छे कुछ जूते पड़ते। तो हजरात गिरामी, इन चार मिजाया मिस्रों के साथ मैं आलमी शोहरत याफ्ता हजरात के मायानाज शायर, मेरे अदब भाई, मैं शायद अदिली साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपके सामने अपना कलाम पेश।
1: चंद खिताब पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाइए। पहला खिताब कि दफ्तर से आज वक्त पे जो घर में हम रहे,
2: अच्छा
1: दफ्तर से आज वक्त पे जो घर में हम रहे, खाने में इत्तेफाक से कंकर भी कम रहे, खाने में इत्तेफाक से कंकर भी कम रहे, लेकिन मियाँ हरेक निवाले के साथ साथ, लेकिन मियाँ हरेक निवाले के साथ साथ उनकी दराज जुल्फों के कुछ पेचो खम रहे, दफ्तर से आज वक्त पे जो घर में हम रहे, शुक्रिया शुक्रिया नवाजी, खाने में इत्तेफाक से कंकर भी कम रहे, लेकिन मियाँ हरेक निवाले के साथ साथ उनकी दराज जुल्फों के कुछ पेचो खम रहे, उनकी दराज जुल्फों के कुछ पेचो खम रहे। शुक्रिया नवाजी। और यह खिताबी मुलाजा फरमाए कि जब वक्त पड़े कोई ना हमराज मिलेगा, शीराज मिलेगा ना तो शहबाज मिलेगा, जब वक्त पड़े कोई ना हमराज मिलेगा, शीराज मिलेगा ना तो शहबाज मिलेगा, शीराज मिलेगा ना तो शहबाज मिलेगा, पोशीदा मर्ज है तो फिर आ जाओ वतन को, पोशीदा मर्ज है तो फिर आ जाओ वतन को, लंदन में कहाँ तुमको दवा साज मिलेगा, पोशीदा मर्ज है तो फिर आ जाओ वतन को, लंदन में कहाँ तुमको दवा साज मिलेगा। और ये खिताबी मुलाजा फरमाए कि उनकी 40 में हुई शादी,
2: अच्छा
1: उनकी 40 में हुई शादी, सब्र उनका बहुत ही बढ़िया है, सब्र उनका
2: बहुत ही बढ़िया है,
1: बहुत ही बढ़िया है, और जौजा पेशेंट निकली शुगर की,
3: अरे
1: जौजा पेशेंट निकली शुगर की, सब्र उनका बहुत ही मीठा है, सब्र उनका बहुत ही मीठा है। और ये मुलाजा फरमाए कि सादिक भाई के मेहमा की, देखिए शूरा के घर में मेहमा आते हैं तो शूरा भी उनकी तवाजु करते हैं, खातिर करते हैं, किस अंदाज से करते हैं मुलाजा फरमाइए कि मेहमा की तवाजों में बखालत नहीं करते, मेहमा की तवाजों में बखालत नहीं करते, हम गजलें सुनाए बिना रुख्सत नहीं करते, हम गजलें सुनाए बिना रुख्सत नहीं करते, मेहमा की तवाजों में बखालत नहीं करते, हम गजलें सुनाए बिना रुख्सत नहीं करते, और क्या अपने खुसर से करें बेगम की शिकायत,
2: अच्छा
1: क्या अपने खुसर से करें बेगम की शिकायत, مظلوم سے مظلوم شکایت نہیں کرتے. کیا اپنے خسر سے کریں بیگم کی شکایت، مظلوم سے مظلوم شکایت.

0: दूर हो गए
1: उधर की
0: तरफ, अपने ही लोग हमसे बहुत दूर हो गए।
1: मल्ले पल्ले जाना था।
0: दो तीन शेर अर्ज कर रहा हूँ कि जो मंजिले यकीन और गुमा से गुजर गए, जो मंजिले यकीन और गुमा से गुजर गए, बढ़ते हुए वो कौन और मकान से गुजर गए। जो मंजिले यकीन और गुमा से गुजर गए, बढ़ते हुए वो कौन और मकान से गुजर गए, तारीख के वरक का वो उन्वान बन चुके, तारीख के वरक का वो उन्वान बन चुके, हम लेके अपने नक्श जहां से गुजर गए, हम लेके अपने नक्श जहां से गुजर गए, तारीख के वरक का वो उन्वान बन चुके, हम लेके अपने नक्श जहां से गुजर गए। और गजल पेश कर रहा हूँ, इजाजत। हम अपने नक्श लेके जहां से गुजर गए, मतलब अर्ज कर रहा हूँ, जमाना साथ है जब तक, जमाना साथ देता है, जमाना साथ है जब तक,
1: जमाना
0: साथ देता है, फिर इसके बाद जाने कौन किसका साथ देता है। जमाना साथ है जब तक,
1: जमाना
0: साथ देता है, फिर इसके बाद जाने कौन किसका साथ देता है। शेर समाज कीजिए शायद साहब के, जहाँ बेकार हो जाते हैं सारे खून के रिश्ते,
1: जहाँ
0: बेकार हो जाते हैं
1: सारे
0: खून के रिश्ते, वहाँ एक दर्द का रिश्ता हमारा
1: साथ देता है।
0: जहाँ बेकार हो जाते हैं सारे खून के रिश्ते, जहाँ बेकार हो जाते हैं सारे खून के रिश्ते, वहाँ एक दर्द का रिश्ता हमारा साथ देता है। वहाँ एक दर्द का रिश्ता हमारा साथ देता है। गुजारा कर रहे हैं आज हम एक ऐसी दुनिया में, गुजारा कर रहे हैं आज हम एक ऐसी दुनिया में, पराया साथ देता है ना अपना साथ देता है। गुजारा कर रहे हैं आज हम एक ऐसी दुनिया में, गुजारा कर रहे हैं आज हम एक ऐसी दुनिया में, पराया साथ देता है ना अपना साथ देता है, पराया साथ देता है ना अपना साथ देता है। हमारे दौर में अखलाक की रस्में नहीं बाकी, हमारे दौर में अखलाक की रस्में नहीं बाकी, जहाँ पर मसलहत हो कौन हक का साथ
1: देता है,
0: जहाँ पर मसलहत हो
1: कौन
0: हक का साथ देता है।
1: हमारे
0: दौर में अखलाक की रस्में नहीं बाकी, जहाँ पर मसलहत हो कौन हक का साथ देता है। और शेर समाप्त कीजिए कि इजाजत बस उसी को है हमारे साथ चलने की, इजाजत बस उसी को है हमारे साथ चलने की, जो बस्ती को जलाने में हमारा साथ देता है,
1: जो बस्ती
0: को जलाने में हमारा साथ देता है। इजाजत बस उसी को है हमारे साथ चलने की, जो बस्ती को जलाने में हमारा साथ देता है। और आखिरी शेर देखिए कि सजा मासूम को मिलती है खातिल छूट जाते हैं, सजा मासूम को मिलती है खातिल छूट जाते हैं, हमारे दौर में इंसाफ किसका साथ देता है।
1: बिल्कुल सच का,
0: हमारे दौर में इंसाफ किसका साथ देता है। सजा मासूम को मिलती है खातिल छूट जाते हैं, हमारे दौर में इंसाफ किसका साथ देता है। और मक्ता समाप्त कीजिए कि अंधेरों से तो ए फारूक हमने दुश्मनी कर ली, अंधेरों से तो ए फारूक हमने दुश्मनी कर ली, कहाँ तक देखना है अब उजाला साथ देता है,
1: कहाँ
0: अब उजाला साथ देता है।
1: जमाना
0: साथ दे जब तक,
1: उधर ही
0: जमाना साथ देता है, फिर इसके बाद जाने कौन किसका साथ देता है। सजा मासूम को मिलती है खातिल छूट जाते हैं, सजा मासूम को मिलती है खातिल छूट जाते हैं, हमारे दौर में इंसाफ किसका साथ देता है, हमारे दौर में इंसाफ किसका।
1: हजरात गिरामी, ये थे محترم فاروق عارفی صاحب, قاضی فاروق.

0: रिफी साहब, अब मैं एक ऐसे उस्ताद शायर को कलाम पेश करने की ज़हमत दे रहा हूँ जिन्हें दुनिया अदब ज़ैम ज़ुमरा के नाम से जानती है। मैं ज़ैम ज़ुमरा साहब से, जिनके कई शागिर्द हैदराबाद में इस वक्त मुशायरे पढ़ रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें।
1: अस्सलामुअलैकुम। गज़ल का मतलब पेश खिदमत है।
0: अच्छा
1: बुला ना पाया तुझे मेरा मन ही ऐसा था।
2: अच्छा

0: मेरा मन ही ऐसा था,
1: अच्छा बुला ना पाया तुझे मेरा
0: मेरा
1: मन
0: मन
1: ही
0: ही
1: ऐसा
0: ऐसा
1: था,
0: था, तेरा खुलूस तेरा बांकपन ही ऐसा
1: ऐसा
0: था,
1: था। वाह
0: तेरा खुलूस तेरा बांकपन ही ऐसा था।
1: वाह,
0: न शाम की थी खबर और न सुबह की परवाह,
1: मन
0: न शाम की थी खबर और न सुबह की परवाह, वो अपने प्यार की धुन में मगन ही ऐसा
1: ऐसा
0: था,
1: था। अरे वाह
0: वो अपने
1: वाह
0: प्यार की धुन
1: वाह
0: में
1: वाह वाह,
0: मगन
1: मगन
0: ही ऐसा था। जरा सी बात पे झगड़ा, जरा सी देर में प्यार,
1: अच्छा
0: वाह,
1: है, अच्छा है।
0: जरा सी बात पे झगड़ा,
1: जरा
0: जरा
1: सी
0: सी
1: देर
0: देर
1: में
0: में प्यार,
1: प्यार,
0: हमारे इश्क का दीवानापन ही ऐसा था,
1: अच्छा है।
0: हमारे
1: वाह,
0: इश्क का दीवानापन ही
1: दीवानापन ही
0: ऐसा
1: ऐसा
0: था
1: था।
0: कि जिसके हटते ही सूरज हमें डराने लगा,
1: अच्छा,
0: कि जिसके हटते ही सूरज
1: सूरज
0: हमें
1: हमें
0: डराने
1: डराने
0: लगा,
1: लगा,
0: हमारे सर पे वो साया फिगन ही ऐसा था,
1: ऐसा
0: हमारे
1: था।
0: सर पे
1: क्या
0: वो साया फिगन ही ऐसा था। ना हम पे खैर बरसता तो और क्या होता,
1: खैर बरसता तो और क्या
0: न हम
1: होता।
0: पे खैर बरसता तो और क्या होता, हमारे दीन से बेगानापन ही ऐसा था।
1: अरे वाह वाह, क्या तंज है
0: सुनाया
1: साहब,
0: वाह
1: वाह वाह
0: सुनाया
1: वाह।
0: ना,
1: फिर एक बार पढ़ दीजिए। फिर पढ़ लीजिए। वाह वाह वाह,
0: न हम पे खैर बरसता तो और क्या होता,
1: अरे वाह वाह वाह
0: हमारा
1: वाह
0: दीन
1: वाह,
0: से बेगानापन ही ऐसा
1: ऐसा
0: था।
1: था।
0: क्या कहें, वह है मेला न होगा कभी कयामत तक,
1: अच्छा,
0: वह है मेला
1: कफन ही
0: न
1: ऐसा था।
0: होगा कभी कयामत तक, किसी के जिस्म से लिपटा कफन ही ऐसा
1: अरे
0: था,
1: वाह वाह वाह,
0: किसी
1: बहुत
0: के
1: अच्छा,
0: जिस्म से लिपटा कफन
1: कफन
0: ही
1: ही
0: ऐसा
1: अच्छा,
0: था। यकीन अगरचे न करते तो और क्या
1: क्या
0: करते,
1: करते
0: अच्छा
1: तो
0: यकीन अगरचे
1: फिर
0: न
1: अगरचे
0: करते
1: क्या
0: तो और क्या करते,
1: करते।
0: सुफ़ेद झूठ का उजला बदन ही ऐसा
1: आ,
0: था।
1: अरे वाह
0: अरे
1: वाह, अरे
0: बहुत
1: क्या
0: बढ़िया
1: तंज
0: साहब,
1: लिया भाई। बहुत अच्छा,
0: अरे वाह
1: बहुत
0: वाह वाह,
1: अच्छा गाया,
0: सफ़ेद
1: बहुत
0: झूठ का उजला बदन, फिर एक
1: अच्छा,
0: बार पढ़
1: वाह
0: दीजिए।
1: वाह वाह
0: क्या
1: वाह
0: तशबीह है,
1: वाह
0: यकीन
1: वाह
0: अगरचे न करते तो
1: वाह,
0: और
1: क्या
0: क्या
1: है,
0: करते,
1: ऐसा
0: सुफ़ेद झूठ का उजला बदन ही ऐसा था।
1: था।
0: और
1: वाह वाह वाह वाह
0: आखिरी शेर, जहाँ खुलूस व मोहब्बत की हुक्मरानी थी, जहाँ खुलूस व मोहब्बत की हुक्मरानी थी, वो भाईचारगी वाला दकन ही ऐसा था,
1: वाह, वाह वाह,
0: वो
1: भोर में
0: भाईचारगी
1: तरन्नम
0: वाला
1: सबा,
0: दकन ही ऐसा था।
1: वाह वाह वाह
0: जी,
1: वाह
0: और
1: वाह,
0: मकता है कि खुलूस प्यार लुटाने से कम हुआ न जहीम,
1: क्या बात,
0: खुलूस प्यार लुटाने से कम हुआ न जहीम,
1: वाह वाह
0: मिला
1: वाह,
0: जो पुरखों से तुझको वो धन ही ऐसा था,
1: धन ही
0: अच्छा
1: ऐसा था,
0: मिला जो पुरखों से तुझको वो धन ही
1: धन ही ऐसा,
0: ऐसा
1: वाह वाह
0: था।
1: वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये थे जनाब ज़ैम ज़मरा साहब, जो अपने खूबसूरत गज़ल से, मनक़िस लफ्ज़ों से हमको नवाज रहे थे। अब आइए, मैं एक और माहिर अरूज हज़रत अखंड भारती जी से मैं कहता हूँ, जनाब समील्ला समीर साहब से गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया सादिक
0: जी
1: साहब,
0: जी
1: मुलाजा कीजिए। एक ख़ता मैंने कहा है, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का एक मिसरा मुस्तार लेके
0: जी
1: अर्ज़ किया है कि कातिल बना है और उसे इस पे नाज है,
0: अच्छा,
1: कातिल बना है और उसे इस पे नाज
0: वाह
1: है, हाकिम की हर सदा में तअस्सुब का साज है। कातिल बना है और उसे इस पे नाज है, हाकिम की हर सदा में तअस्सुब का साज है, जालिम को ढील देता है अल्लाह भी क्या करे, जालिम को ढील देता है अल्लाह भी क्या करे, सच है हराम जादे की रस्सी दराज है।
0: वाह,
1: पहुंचा है शब कमंद लगा कर वहां रखीब, सच है हराम जादे की रस्सी दराज है। एक और एक कथा, कितनी अना है मुझ में मगरूर जानते हैं, कितनी अना है मुझ में मगरूर जानते हैं,
0: क्या
1: बदनाम हूं
0: बात
1: मैं कितना मशहूर जानते
0: है,
1: हैं,
0: जानते हैं,
1: कितनी अना है मुझ में मगरूर जानते हैं, बदनाम हूं मैं कितना
0: कितना
1: मशहूर
0: मशहूर
1: जानते
0: जानते
1: हैं,
0: हैं,
1: दुश्मन हूं जालिमों का मैं जब्र का अदू हूं,
0: अच्छा मिश्रा
1: किरदार क्या है मेरा मजबूर जानते हैं।
0: मजबूर जानते हैं। अरे वाह
1: आखिरी
0: वाह,
1: किताब,
0: जी जी
1: ख्वाबों को बेच बेच के ताबीर खो दिया,
0: अरे वाह,
1: ख्वाबों को
0: बेच
1: बेच
0: बेच के
1: बेच के
0: ताबीर
1: ताबीर
0: खो
1: खो
0: दिया,
1: दिया, तदबीर करते करते मैं तकदीर खो दिया,
0: तकदीर खो दिया,
1: तस्वीर जब से यार की दिल में उतर गई, दुनिया के सारे हुस्न की तासीर खो दिया।
0: वाह वाह
1: एक गजल के
0: वाह,
1: कुछ शेर,
0: जी जी इरशाद आता हो,
1: मतलब है कि तुझसे मिला के हाथ, तुझसे मिला के हाथ
0: वाह
1: कहीं के नहीं रहे,
0: वाह,
1: तुझसे मिला के हाथ
0: कहीं के नहीं
1: कहीं
0: रहे,
1: के नहीं रहे, हम चल के तेरे साथ कहीं के नहीं
0: क्या
1: रहे,
0: जमीन
1: तुझसे
0: निकाले भाई, वाह वाह वाह,
1: फरेब खा के संभलता है कब कोई, बिल्कुल है सच ये बात,
0: बात
1: कहीं
0: कहीं
1: के
0: के
1: नहीं
0: नहीं
1: रहे।
0: रहे।

0: किरदार देखते हैं फकत आदमी का हम, किरदार देखते हैं फकत आदमी का हम, जो देखे जात पात कहेंगे नहीं रहे।
1: सही है।
0: महफूज तुमने कोई अमानत नहीं रखी,
1: वाह
0: महफूज तुमने कोई अमानत नहीं रखी, करके तसर्रुफात कहेंगे नहीं रहे।
1: वाह
0: महफूज तुमने कोई अमानत नहीं रखी, करके
1: वाह
0: तसर्रुफात कहेंगे नहीं रहे। मक्ते से पहले एक शेर है कि हम तेरे हैं तो लोग समझते हैं खुश नसीब,
1: वाह
0: सच्ची नहीं ये बात
1: कहीं के नहीं रहे।
0: मक्ता है वो हारता था हमसे हर एक बात में, समी खाई उसी से मात, कहीं के नहीं रहे। बहुत शुक्रिया।
1: ये थे जनाब समीउल्लाह समी साहब। हजरत गिरामी, हर मुशायरे में एक सदर होता है, और आज की सदारत नौजवान शायर डॉक्टर तैयब पाशा कादिर फरमा रहे थे। हम उनको इब्तिदा में ही कलाम उनका सुना, लेकिन अब सदारत कलाम से महसूस होंगे डॉक्टर तैयब पाशा कादिर।

भाई दोस्तों सुनते हैं गीत सुरीले गाते जा में कुछ सुरीले गीत। आंख जिससे दुनिया का नज़ारा हम करते हैं ना सिर्फ हमको दुनिया से वाकिफ कराती है बल्कि दुनिया से रोशनास भी कराती है। आंख ना सिर्फ आदमी को एक पैगाम भी दे जाती है बल्कि एक आदमी को इदराक भी दे जाती है। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म चमत्कार से। इस फिल्म के गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक जी ने।

फिल्म चमत्कार से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, अक्सर और बेशतर ये मुशाहदे में आता है कि किसी की आंखें बहुत ही खूबसूरत होती है और इसे देखकर लोग उसमें गुम हो जाते हैं। यकीनन इंसान की आंखें ना सिर्फ खूबसूरत होती है बल्कि ये एक आदमी को दूसरे से वाकिफ कराती है और एक राबता कायम करती है। आइए दोस्तों, इसी पर सुनते हैं कि जिसको लिया है हमने फिल्म दबंग से। इस फिल्म के गीत को गाया है राहत फ़तेह अली खान और श्रिया घोषल ने। गीतकार है फैज़ अनवर और संगीत से इसे सजाया है साजिद वाजिद ने।

दोस्तों, हर खूबसूरत शय को शायरों ने अपने कलाम का मौजू बनाया है। आंखें भी उन्हीं में से हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मुब्तलाए दर्द कोई वजू हो, रोती है आंख किस कदर, हमदर्द सारे जिस्म की होती है आंख। जी हाँ दोस्तों, आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म बाजीगर से। इस फिल्म के गीत को गाया है अनु मलिक ने और गीतकार है देव कोहली।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बाजीगर से लिया गया ये गीत। ये आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 MHz पर। हम आपको बता दें, रात ठीक 10:30 पर ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मैच, जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच कैनिंगटन ओवल लंदन में खेला जा रहा है, इस मैच की हिंदी और अंग्रेज़ी में लाइव कमेंट्री आप रेडियो पर सुन सकेंगे और प्रोग्राम नैरंग न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर जारी रहेगा।

सामईन गीत सुरीले गाते जा में गीतों के सिलसिले को जारी रखते हुए आज सुनते हैं अगला गीत, जिसको लिया है हमने फिल्म कहो ना प्यार है से। इस फिल्म के गीत को गाया है लकी अली ने।

सांस में दिल की धड़कन होगी और हर लफ्ज में होगा मौसम का जादू। दोस्तों वो कहते हैं ना कि मोहब्बत का मौसम

इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के पहले गीत के साथ, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने और फिल्म है पाकीज़ा।

फिल्म कहो ना प्यार है से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। यकीनन दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी सिंदादिली का नाम है। ज़िंदगी का हर पल हर लम्हा लासानी है और कीमती है, और इसे भरपूर और जीना चाहिए। आइए सुनते हैं इसी पर एक गीत जिसको लिया है हमने फिल्म दिल चाहता है से। इस फिल्म के गीत को गाया है शंकर और क्लिंटन ने।

फिल्म दिल चाहता है इसलिए गया, ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं रहती, यानी नथिंग इज़ परमानेंट। वैसे ज़िंदगी में भी कोई चीज़ या हालात एक जैसे नहीं रहते, बल्कि ये ज़िंदगी में बदलाव तब्दीली आती रहती है। कभी खुशी कभी मुश्किल वक्त से इंसान का सामना ज़रूर होता है। वैसे दोस्तों इन लम्हों में कोई मिल जाए तो ज़िंदगी में एक नई तब्दीली आ जाती है। आइए सुनते हैं कैसा है कि जिसको लिया है हमने फिल्म कोई मिल गया से। इस फिल्म के गीत को गाया है उदित नारायण और चित्रा जी ने, गीतकार है इब्राहिम अश्क और संगीत से इसे सजा है राजेश रोशन ने। आइए सुने।

फिल्म कोई मिल गया से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों, ज़िंदगी में किसी का मिल जाना और उसका चले जाना ये एक मुश्किल मरहला होता है। हम चाहते हैं कि जो हमारे हम ख्याल हैं और हमारे खैर ख्वाह हैं वो हमारे साथ ज़िंदगी में साथ देते रहें। आइए सुनते हैं एक ऐसा है कि जिसको लिया है हमने फिल्म कभी अलविदा ना कहना से।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत सुरीले का तेजा में कुछ सुरीले गीत। प्रोग्राम नारंग के आखिर में आइए सुने पयाम शब, पेश कर रहे हैं जैदी।

0: कुछ और भी हैं काम हमें ऐ गमे जाना, कुछ और भी हैं काम हमें ऐ गमे जाना। कब तक कोई उलझी हुई जुल्फों को संवारे। इंसान को जिंदगी में तवाजुन, मकसदियत और वक्त की कदर का दर्स लेना चाहिए। मोहब्बत अपनी जगह अहम है, लेकिन जिंदगी सिर्फ इश्क मोहब्बत का नाम नहीं। इंसान के जिम्मे बहुत सी दीगर जिम्मेदारियां भी हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। आज का पैगाम ये है कि आदमी को जज्बात, परेशानियों या किसी एक मसले में इस कदर उलझ जाना नहीं चाहिए कि वह अपनी दूसरी जिम्मेदारियों, फराइज और जिंदगी के मकासिद को भूल जाए। दानिशमंद वही है जो अपने जज्बात पर काबू रखते हुए वक्त और सलाहियतों को तामीरी कामों में सर्फ करे। जिंदगी में मोहब्बत और जज्बात अहम हैं, लेकिन इंसान को अपने फराइज, जिम्मेदारियों और बड़े मकासिद को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वक्त कीमती है, इसे सिर्फ एक ही फिक्र में जाया करना दानिशमंदी नहीं। तुम्हें तो नाज बहुत दोस्तों पे था जालिब, तुम्हें तो नाज बहुत दोस्तों पे था जालिब। अलग थलग से हो, क्या बात हो गई प्यारे। इंसान को दोस्ती, ताल्लुकात और हालात की नापायदारी के बारे में भी सोचना चाहिए। जिस शख्स को अपने दोस्तों पर बहुत फख्र होता है, वो कभी कभी तन्हा और अलग थलग भी नजर आता है। आज का पैगाम ये है कि इंसान को दोस्तों पर भरोसा तो करना चाहिए, लेकिन अपनी सारी उम्मीदें और सहारा सिर्फ लोगों से वाबिस्ता नहीं करना चाहिए। वक्त, हालात और मफादात बदलने से बाज़ाओकात करीबी लोग भी दूर हो जाते हैं। इसीलिए इंसान को अपने किरदार, खुददारी और ऊपर वाले पर भरोसे को मजबूत रखना चाहिए। दोस्ती एक कीमती नेमत है, लेकिन जिंदगी का सहारा सिर्फ दोस्तों को ना बनाओ। अपने किरदार को ऐसा बनाओ कि अगर लोग साथ छोड़ भी दें तो तुम्हारी हिम्मत, खुददारी और हौसला कायम रहे। हमें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की कदर करना भी जरूरी है। अगर दूरियां पैदा हो जाएं तो अना के बजाय मोहब्बत, गुफ्तगू और खैरख्वाही के जरिए ताल्लुकात को दोबारा जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए।
1: इसी पर हमेशा आपके साथ दोस्तों, आज का अनरंग प्रोग्राम अब अपने अख्ताम को पहुंचता है। इस उम्मीद के साथ कल शब 9:30 पर हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई बज़ में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।

1.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया, सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations

0: Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे, साथ ही चर्चा भी करेंगे. आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे. उदयन जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. Benchmark domestic indices rise, Sensex adds nearly 580 points, Nifty settles at 24,176. India and Japan exchange agreements in fields of including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. And global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स 580 अंक बढ़ा, निफ्टी 24,176 पर बंद हुआ. भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए और कच्चे तेल के वैश्विक दाम घटे.

0: And before we begin the program, an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं आइए अब रुक करते हैं और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज 0.7% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 579 अंक बढ़कर 77,502 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 170 अंकों की बढ़त के साथ 24,176 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में 0.5% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। इससे पहले बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुले और लगातार दूसरे दिन भी इनमें बढ़त रही। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और सकारात्मक भू राजनीतिक रुझानों के कारण निवेशकों का आत्मविश्वास बना रहा।
0: Benchmark domestic equity indices ended over 0.7% higher today. The Sensex rose 579 points to close at 77,502. The Nifty gained 170 points to settle at 24,176. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index added 0.5% and the Small-Cap 100 index climbed more than 1.2%. Earlier markets opened on a positive note and extended their upward momentum for the second consecutive session. Investor sentiment remained upbeat, supported by softer crude oil prices and positive geopolitical developments.
1: Sensex में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंफोसिस 5.5% से अधिक, वहीं टेक महिंद्रा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में लगभग 4.5% का उछाल आया। उधर खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में लार्सन एंड टूब्रो 0.8%, मारुति में लगभग 0.5% और एक्सिस बैंक में 0.3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 20 out of 25 sectors ended in positive zone. Among the key gainers, IT climbed almost 4.4%, focused IT rose 4.3% and consumer durables as well as realty added over 1.4%. In contrast, capital goods fell over 0.7%, telecommunications slipped nearly 0.7% and power lost over 0.6%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,536 companies advanced, shares of 1,740 companies declined and shares of 182 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर होकर 95.39 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर

0: की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। उदयन, अगर हम आज के ट्रेजेक्ट्री की बात करें कि आज किस तरीके से मार्केट ने प्रदर्शन किया और क्या प्रमुख कारक रहे जिस वजह से मार्केट का ये रुझान हमें देखने को मिला, तो आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, ये मतलब सारी जो बातें हैं एक चीज के साथ हम आराम से जोड़ सकते हैं, वो ये है कि तेल से जुड़े हुए सुर्खियाँ क्या रही, हेडलाइंस क्या रही, वो सब पॉजिटिव रही हैं कि जैसे अपने
0: दाम घट गए,
1: कुछ प्रोग्रेस इनडायरेक्ट टॉक्स में के रिपोर्ट्स आए, कतर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। इसके अलावा और कुछ रिपोर्ट्स आए, कुछ सुपर टैंकर्स जो हैं सऊदी अरब का तेल तकरीबन 2 मिलियन बैरल्स के आसपास वर्थ ऑफ ऑयल वहाँ से निकला है। ये बहुत बड़ी तादाद है जो हमारे यहाँ तो नहीं आ रही, ये चीन जा रही है और कुछ और देशों में जा रही है, पर ये एक फ्लो ऑफ गुड पॉजिटिव हेडलाइंस, मतलब बैड न्यूज़ नहीं आ रहा है। और उसका इमीडिएट इम्पैक्ट सबसे पहले करेंसी मार्केट से एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन, वो सारा एक डोमिनो इफेक्ट पॉजिटिव, इसको वर्चुअस साइकिल बोलते हैं, वो उस तरीके से घूमता है। और आप देखेंगे कि हर जगह में कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देखिए हम रुपए के वैल्यू में वो बात नज़र नहीं आ रही, पर आरबीआई ओवरऑल एक मैनेजमेंट कर रही है जिसमें वो फॉरेक्स रिजर्व्स, आपका करेंसी में मूवमेंट ज़्यादा ना हो उसके बारे में, तो वहाँ पे उसकी बात को थोड़ी देर के लिए हम अलग रखना पड़ेगा। पर इसके अलावा जो है बाकी जो चीज़ें हैं, आप सब जगह में एक इट्स रिकूपिंग, जो स्लाइड हुआ था वो ऐसा लग रहा है कि वापस आ रहा है।
2: Udayan, let's talk about specific sectors. We've seen a rally today in the IT sector. It's a very interesting trend that we've been seeing in the IT sector. You know, if you look at it overall, in the last 20 trading sessions, it tanked 17%. In the last 4 trading sessions, it was down 7%. But today, I talk about Nifty in IT index, there is a rally of 4.64%. What's driving this rally in the IT sector? Because that's one of the major reasons we have seen the Sensex and the Nifty, you know, ending in green.
1: So, you're so right. And a lot of these IT stocks, by the way, are large caps. And, you know, their capitalizations are large.
2: Yes.
1: And there's this whole theory going in, and I buy into that theory. Not theory, experts are saying that a lot of the exodus of money that has happened is FPI money has been, they were invested in large caps, whereas the domestic institutions went in and bought mid cap and small cap. So two different sectors of the market have got affected. So, so at some point, you know, when you keep buying, rather selling, it happens with buying also. You suddenly realize, oh, you know, maybe we have done enough. Maybe we need to do the different thing. The other very interesting thing that has happened today is maybe it happened yesterday, but it came to my notice today, is two very prominent brokerages, or shall we say research firms.
2: Okay.
1: Maybe brokerages would be a rather appropriate word. They have come out with notes where they are saying that it's not so bad, you know. Hey, it's not so bad after all. It's good, you know. They're going to bounce back. So, what I'm trying to hint,
2: it has affected the sentiments.
1: Yeah, you know, subtly that sometimes, you know, the disclaimer that you gave right in the beginning of the program. So every investor needs to think through this little bit of critical thinking. That collective wisdom, yes, it's important.
2: Yes,
1: but sometimes that wisdom has to work for you. If it doesn't make sense to you, maybe you should be thinking harder. So basically what I'm trying to say is that it is, now they've decided that, well, it's IT, Indian IT deserves love, and that's why it's getting it.
0: Right. Udayan, ye to hamare IT sector ki baat rahi, lekin ہم اگر ایف آئی آئیز کی نکاسی پہ ایک بار غور کریں تو ہم نے اگر پچھلے ستر کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی کمپیریٹیولی جو ہے وہ کم نکاسی ہوئی ہے, اور کانسٹنٹلی جو ڈی آئی آئیز ہیں وہ تو سپورٹ کر ہی رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک مومنٹم باندھتا ہے مارکیٹس کو اپ کرنے کے لیے.
1: دیکھیے اس میں ایک اور تھیم بھی آ جاتی ہے, جب کبھی سب نے تب بھی کہا تھا اور اب بھی یہ بات ہے.

0: लगेगी, जब भी उनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लगेगा कि नहीं, ये जो एआई, सो कॉल्ड एआई थीम है, जहाँ पे फाउंडेशनल जो काम हो रहा है, चिप्स बन रहे हैं, मॉडल्स बन रहे हैं, उनके ऊपर जो इतना पैसा लग रहा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह में, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो जौन से ऐसे दिन होंगे जहाँ पे लोगों को नर्वसनेस लगेगी, तब तब भारतीय मार्केट्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये वही वाली बात है, किस दिन विच साइड ऑफ द बेड यू गेटिंग ऑफ, कैसे आप सो के उठे, कौन से बिस्तर के कौन से साइड से उठे, उस हिसाब से आपका मूड आपका बन रहा है। तो इसलिए जो है, भारत के जो निवेशक हैं उनका जो रोल है, कई लोग उसको बहुत सिनिकली देखते हैं, ये तो मतलब अजीब ही लगता है मेरे जैसे लोगों को, पर वो एक स्टेबिलिटी उन्होंने बना के रखा हुआ है और उनका जो योगदान है वो जबरदस्त है। सो दिस इज कि डोमेस्टिक जो पार्टिसिपेशन, आप और हम जैसे लोग और इस प्रोग्राम को सुनने वाले लोग जो भारत की प्रगति में एक हिस्सेदारी ले रहे हैं,
1: जी
0: वो एक बहुत जबरदस्त कहानी है जिसके बारे में उतनी बात अभी तक नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, हो रही है। बट दिस इज अ ट्रिमेंडस स्टोरी विच प्रोबेबली नीड्स मोर प्ले देन इट्स गेटिंग।
1: Udin, would you say that, you know, we India and Japan, the Japanese Prime Minister is of course in India on a 3-day visit, and a slew of agreements were signed, and there were memorandum of cooperations today that were agreed upon. So would you say that, and Japan has also announced $10 billion fresh investment in India across AI, defense technology, and energy security. Would you say that that is also, you know, added a bit to the momentum, positive momentum in the markets, or is it a different
0: I don't think
1: thing?
0: people in the markets would be so.
1: Okay.
0: See, these things will play out in the future.
1: Right.
0: Markets typically don't look so far into the future.
1: Right.
0: They reward, if you see unencumbered cash flows coming in, they will immediately go and reward. Yes, one can always argue that AI is out in the future and so on and so forth. So sometimes it's also a FOMO, fear of missing out. You don't want to miss out on something which is once in a generation. So wisdom is different, but that is important, the things that you're talking about, because Japan has been doing business with us for ages now.
1: Ages, yes.
0: And if you ask me, in my opinion, that relationship has been underdone. The bromance, or whatever you want to call it,
1: Okay.
0: that relationship that we have, it probably has got, it has been underserved despite whatever breadth it has. And it probably is the time to make up for lost time. And it's not a day too late.
1: Right. We will talk about the India-Japan, agreements a little later in the program. But right now, I think, Prachi, why don't you talk about the Asian market?
2: बिल्कुल अनुभा। श्रोताओं, आइए रुख करते हैं एशिया बाजार की तरफ। प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में आज गिरावट आई। चिप सेक्टर में गिरावट की वजह से दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 8% फिसला। जापान का निकेई 2.5%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 2% और ताइवान का ताइएक्स 0.5% से अधिक लुढ़का। वहीं सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1% से अधिक और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लगभग 0.8% ऊपर बढ़ा। लगभग 8% हम कॉस्पी में देख रहे हैं गिरावट, महोदय किस तरीके से आप इसे देखते हैं और ये क्यों किस तरीके से आ रहा है, आप प्लीज इसे बताएं।
0: देखिए, वो एक रनअप था जो बिल्कुल तेजी के साथ होता चला गया, और कई बार क्या होता, चिप्स, आप जैसे हमारे भारतीय बाजारों में देखते हैं कि पहले ही एक सर्टन सेक्टर में आपको पसंद आने लगे, लार्ज कैप, फिर आपने कहा कि नहीं, लार्ज कैप पे ये तो बहुत महंगे हो गए, थोड़ा और नीचे चलते हैं, मिड कैप में चलते हैं। तो उस तरीके से है, जब आपने देखा TSMC और डच कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ जो डिज़ाइन करती है चिप्स, तो वो जब आपको लगा कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप सैमसंग और हाइनेक्स पे चले गए जो कि आपके, दे आर आउटस्टैंडिंग, वन ऑफ द लीडिंग मेकर्स, पर आप उस वहाँ पे फोकस करने लग गए। और उसके अलावा तब हेडलाइंस भी ऐसी थी, एनवीडिया ने हैंडशेक किया, तो उससे आपको सारे जो कंपनीज हैं आपस में एक दूसरे के साथ एक जबरदस्त हैंडशेक कर रहे
2: मैं यही बल्कि करना कहना भी चाह रही थी कि अभी यही बाजार है जो अपनी ऊंचाइयों पर भी गया और वही बाजार है जो आज हम देख
0: हैं।
2: रहे हैं।
0: तो जहां पर भी, अगर जब हेडलाइन, जब आप फ्यूचर की तरफ देखते हैं, जैसे अब थोड़ी देर पहले बात होती थी, व्हेन थिंग्स आर आउट इन द फ्यूचर, इट्स अ ग्रोथ सेक्टर, आपको नहीं मालूम कि ये आप किसी को कह

0: सकते कि आज जी आपने पिछले 3 4 महीने पहले ये बोला था, ये क्यों नहीं हुआ, ये दिस इज नॉट राइट. 4 months डाउन द लाइन इट्स प्रॉबली वी टॉकिंग अबाउट 3 4 years चीजें होंगी. सो पीपल आर रेजिंग मनी राइट नाउ. तो उसमें वहां पे जब आपको हेडलाइन ऐसा कुछ आता है, बिकॉज ये कन्विक्शन जो है, आप एक जिसे लीप ऑफ फेथ कहते हैं ना, मेरे को मालूम नहीं यहाँ पे सर्कस कितने लोगों ने रियल लाइफ में देखी है. तो वहाँ पे ट्रेपीज आर्टिस्ट होते हैं
1: जी
0: जो हवा में झूलते हैं, तो एक आदमी छलांग मारता है
1: जी
0: या लेडी छलांग मारती है, उनको पकड़ा जाता है, दूसरे लटक रहे होते हैं वो पकड़ते हैं, उसको लीप ऑफ फेथ बोला जाता है. तो ये लीप ऑफ फेथ की तरह है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आपने कितना कन्विक्शन है, आपके फेथ है
1: यानी
0: कि
1: सुर्खियां पढ़ करके आपकी.
0: जी
1: हाँ
0: आपको यह है कि आपने, मैंने वो छोड़ दिया है जो मैंने पकड़ी थी, और मेरा जो साथी है वो मेरे को पकड़ लेगा, वैसे तो नीचे नेट है जमीन पर दिस इज कॉल्ड द लीप ऑफ फेथ. तो लीप ऑफ फेथ जब डगमगाने लगती है या उसमें कमजोरी आ जाती है, तब तो आप वो देख रहे हैं जो आज आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ सुर्खियां ऐसी निकली कल जिसके वजह से देर इज दिस होल रिविजन कि नहीं, मे बी वी आर जस्ट गेटिंग टू बुलिश आउट देर. तो ये चीजें जो एडजस्टमेंट होती है, समटाइम्स यू आर मूविंग ऑन द फ्यूल्ड बाई सेंटिमेंट. तो सेंटिमेंट का जो फ्यूल है जब वो थोड़ा कम होता है,
1: जी,
0: तो आपका गियर लोअर गियर में आ जाता है.
1: भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की. संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं. दोनों ही देश आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को समझते हैं.
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं. इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है. इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे. एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1,000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी.
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रौद्योगिकी साझेदारी भारत जापान सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होगा.
2: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी. इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है. भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं. जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा.
1: उदयन, अभी प्रधानमंत्री को हमने सुना, उन्होंने कहा कि जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर जो क्षमता है उसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति शक्ति देगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर हम भी ऑफ कोर्स कम्पीट कर रहे हैं. तो हमारी जो एक परिकल्पना है विकसित भारत की, उसको किस तरीके से ये साकार करने में मददगार रहेगा?
0: देखिए, कई बार कई चीजें हैं, अब आपको जीरो से स्टार्ट करने में टाइम लगता है. तो अगर आप वो पार्टनरशिप से करते हैं, तो जहाँ पे आपके दूसरे एक पार्टनर कंट्री हैं, जिस उनके जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो जहाँ पे वो सक्षम ज़्यादा है हमसे, वो चीज़ें वो अपने टेबल पे लाते हैं, और हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो कैपेबिलिटी, वो हम मेज़ पे लाते हैं. तो ये वो वाली अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जहाँ पे हमारे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी जो डिज़ाइनिंग जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसको मिलके हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करें. क्योंकि देखिए, एक पर्टिकुलर देश का नाम लेते हुए ना लेते हुए ये कहना ज़रूरी है, दोनों देश दूध के जले हैं
1: जी,
0: तो छाछ भी वो फूक फूक के पी रहे हैं.
1: जी
0: ठीक है, तो वो क्रिटिकल मिलेनियल से जुड़ा हुआ जो एक्सपीरियंस है, दूसरी चीजें जो हैं, उसको उसको दिमाग में रखते हुए ऑब्वियसली ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ये जरूरी भी चाहिए आपको, क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप. कार प्रोडक्शन बंद हो गया या कुछ और हो गया, डिस्ट्रप्शन हो गया, जस्ट बिकॉज कोई एक स्टेटमेंट चली गई, तो वो उसके ये वो तो छोटी सी बात है, ये जरूरत भी है, और ये लेवरेज किया जाए. जैसे कि मैंने कहा, ये अंडरसर्व था, ये अब वहां पे पहुंच उस पायदान में जा रहा है, उस स्तर में जा रहा है जहां पे से होना चाहिए था.
1: राइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर रिलेटेड स्टोरी.

0: slightly up at 1,44,960 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.5% up at 2,31,320 rupees per kilogram a short while ago.
1: Multi commodity exchange mein agast anubandh wala sona 0.1% ki tezi ke saath 1,44,540 rupees prati 10 gram par tha, aur sitambar anubandh wali chandi 0.5% ki badhat ke saath 2,31,443 rupees prati kilogram par karobar kar rahi thi. Udyan, humne dekha pehle ki abhi kuch 2-4 din pehle ki agar baat kare to thode se corrections aaye, hame nazar aaye the, jisse ki bahut logo ke dil mein khushi bhi hogi, bahut logo ko shayad dukh bhi ho, lekin abhi humne dekha ki thoda sa ek marginal rise dekhne ko mila hai. To aap kis tarike se aane wale waqt mein price ko predict karte hain?
2: देखिए, अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बनी रहती हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में नर्वसनेस रहती है, तब तो वो सोने के दाम में उछाल जरूर आएगा. अगर आपके केंद्रीय बैंक जो खरीदारी कर रही थी, उनकी वो एक बहुत बड़ा कारण था. तो अगर ये चीजें कंट्रोल में रहती, ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, तो ये इसी स्तर पर रहेगा. इसके नीचे जाते हुए मैं देख नहीं पा रहा हूँ. और ये जो निवेश के लिए जो देखते हैं, उनको गोल्डन रूल है 5-10%. 100 रुपए अगर आपके निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, 5-10 रुपए से एक्सीड नहीं होना चाहिए.
1: बहुत बहुत धन्यवाद उद्यन कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए.
2: धन्यवाद.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise. Sensex adds nearly 580 points. Nifty settles at 24,176. Indian-Japan exchange agreements in fields including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. And global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आकाशवाणी के चैनल FM गोल्ड को सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम।

0: भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध

0: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
0: आर्थिक दुनिया, सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। इसमें जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान और समुदाय की भागीदारी से लेकर हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, बेहतरीन कोचिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शामिल है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। फीफा विश्व कप में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच अमरीका के इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, "When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits." He said, "Both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound." The Prime Minister said, "India

कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। मैं कोई इल्जाम नहीं ना कोई गिला बनी, मैं कोई इल्जाम नहीं ना कोई गिला बनी, बस एक आदत की तरह याद करोगे मुझे। मेरे अल्फाज तुम्हारे साथ ना चल पाए तो क्या, मेरे अल्फाज तुम्हारे साथ ना चल पाए तो क्या, भीड़ में भी अलग सी पाओगे मुझे। ढलती सांझ में जब सवाल उठेंगे कहीं, ढलती सांझ में जब सवाल उठेंगे कहीं, एक अधूरी सी कहानी सुनाओगे मुझे, एक अधूरी सी कहानी सुनाओगे मुझे। मैं ना रहूंगी तो भी असर बाकी रहेगा, मैं ना रहूंगी तो भी असर बाकी रहेगा, कभी कभी बेवफा यूं भी सोचोगे मुझे, कभी कभी यूं भी बेवफा सोचोगे मुझे। कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। और अगला गीत आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है कल आज और कल।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आज आपके साथ हूं मैं जयती। निशिगंधा में अगला गीत फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले, आवाज है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की।

शब की पेशानी पे ठहरा दर्द की स्याही में डूबा चांद, दिन की धूप ने जो ना छोड़ा रात ने उसको सौंपा चांद। शब की पेशानी पे ठहरा दर्द की स्याही में डूबा चांद, दिन की धूप ने जो ना छोड़ा रात ने उसको सौंपा चांद। भीड़ के जंगल से निकला रेत में तन्हा भटका चांद, याद की परछाई लिपटी देर तलक सहमा था चांद। नींद के सौदे हार गया जब, नींद के सौदे हार गया जब आंखों की देहरी आया चांद। मैंने पूछा कुछ भी नहीं था, मैंने पूछा कुछ भी नहीं था, गुपचुप दिल को पढ़ता चांद। एक ही चेहरे की खातिर, एक ही चेहरे की खातिर हर मौसम में भटका चांद, हर मौसम में भटका चांद। रात के आखिरी सन्नाटे में खुद से मिलता जुलता चांद, रात के आखिरी सन्नाटे में खुद से मिलता जुलता चांद। शब की पेशानी पे ठहरा दर्द की स्याही में डूबा चांद, दिन की धूप ने जो ना छोड़ा रात ने उसको सौंपा चांद, रात ने उसको सौंपा चांद। अगला गीत, फिल्म का नाम है सनम बेवफा, आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत फिल्म का नाम है पारसमणि, आवाज है लता मंगेशकर और कमल बड़ौत की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आवाज है लता मंगेशकर और उदित नारायण की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत

0: जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।

0: सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय शिक्षक प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अकादमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह श्रृंखला अगले महीने की 15 से 27 तारीख तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट अगले महीने की 15 तारीख से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट अगले महीने की 23 तारीख से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
1: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं फ्रेंड्स भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है
0: In her address, Prime Minister of Japan

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

गीत सुहाने की इस महफिल में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बहारों के सपने, आवाज है लता मंगेशकर की।

तुम आना एक रोज, तुम आना एक रोज मुझसे मिलने, तुम आना एक रोज मुझसे मिलने, मैंने बहुत संभाल कर रखा है तुम्हारे हिस्से का वक्त, मैंने बहुत संभाल कर रखा है तुम्हारे हिस्से का वक्त, तुम आना एक रोज मुझसे मिलने। और अगला गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है आस का पंछी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और गीत सुहाने में अब जो अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जंगली, आवाज मुकेश और आशा भोसले की।

तेरी हर बात को दिल पर उतारा हमने, तेरी हर बात को दिल पर उतारा हमने, जिंदगी हार दी खुद को संवारा हमने। रोज चेहरे पे नए रंग उतर आते हैं, रोज चेहरे पे नए रंग उतर आते हैं, तेरा किस्सा है ये हर बार छुपाया हमने। एक शोला सा उठा था कभी बस्ती के तले, एक शोला सा उठा था कभी बस्ती के तले, वक्त रहते ही उसे खुद से जलाया हमने। बात अधूरी ही सही मगर कहते रहे, बात अधूरी ही सही मगर कहते रहे, वक्त की चाल को चुपचाप निभाया हमने। तेरी हर बात को दिल पे उतारा हमने, जिंदगी हार दी खुद को संवारा हमने, जिंदगी हार दी खुद को संवारा हमने। और अब जो फिल्म, जिस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसका नाम है बॉम्बे टू गोवा। आवाज है किशोर कुमार की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते, वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते, उन्हें कौन समझाए मोहब्बत में हिसाब नहीं होते। वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते, उन्हें कौन समझाए मोहब्बत में हिसाब नहीं होते। सोच समझकर तो बस रिश्ते निभाए जाते हैं, सोच समझकर तो बस रिश्ते निभाए जाते हैं। दिल जहां उतर आए वहां सवाल नहीं होते। हमने चाहा तो किसी शर्त का सौदा न किया, हमने चाहा तो किसी शर्त का सौदा न किया। इश्क में मुनाफे के अंदाज नहीं होते, इश्क में मुनाफे के अंदाज नहीं होते। वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते, उन्हें कौन समझाए मोहब्बतों में हिसाब नहीं होते। इश्क को इश्क ही रहने दो दलीलें न गढ़ो, इश्क को इश्क ही रहने दो दलीलें न गढ़ो। आग के सामने अक्सर बयान नहीं होते, आग के सामने अक्सर बयान नहीं होते।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है यशुदास की और फिल्म का नाम है सुनैना। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 3:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है संगम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।

भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेवार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

0: बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय टीचर ट्रेनिंग अकेडमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये अकेडमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों की प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी उगदहान प्रांत में तीर्थयात्रा पर जा रहे 9 भिक्षुओं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सूत्रों के अनुसार 11 साल के एक लड़के ने पिकअप ट्रक से इन भिक्षुओं को टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि उगदहान प्रांत के कुल 35 भिक्षु तीर्थयात्रा पर थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह श्रृंखला अगले महीने की 15 से 27 तारीख तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट अगले महीने की 15 तारीख से गाली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's 4th vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. India and Japan agreed to deepen cooperation in strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between PM Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi yesterday. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both sides expressed their shared intention to work as responsible powers in major energy-consuming countries.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। दिल ने धड़क कर जो कहा याद आया, किसी अपने का गिला याद आया। आज बोझिल थी जरा सांसों की चाल, तू परेशानी में था याद आया। दिन किसी तरह से काटा मैंने, फिर तेरा रात का वादा याद आया। लोग

मिलते रहे चेहरे बदले, लोग मिलते रहे चेहरे बदले, फिर कोई भूला सा शहर याद आया। बात कहने की हिम्मत थी लेकिन जब वो चला ही गया याद आया। फूल के नीचे बैठी रही देर तलक, फूल के नीचे बैठी रही देर तलक, दिल बहुत रोया तब याद आया, दिल बहुत रोया तब याद आया। और अगला गीत, फिल्म का नाम है कोयला, आवाज़ है उदित नारायण की।

हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है। जो वक्त की धूप से आंखें चुराता रहा, उसे अपने ही साए में जलना जरूरी है। रिवायतों की धूल जब सांस रोकने लगे, तो कुछ सवालों का उगना जरूरी है। जो कल की लकीरों को तकता ही बैठा हो, उसे आज की मिट्टी में चलना जरूरी है। हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है ड्रीम गर्ल।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है गुप्त, आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है सनम बेवफा, आवाज है लता मंगेशकर की।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलने के वादे के साथ आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों तथा प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय

0: के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी मुग्दाहान प्रांत में तीर्थ यात्रा पर जा रहे 9 भिक्षुओं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। सूत्रों के अनुसार 11 साल के एक लड़के ने पिकअप ट्रक से इन भिक्षुओं को टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि मुग्दाहान प्रांत के कुल 35 भिक्षु तीर्थ यात्रा पर थे। फीफा विश्व कप में स्पेन ने राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारज़ाबाल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई, जिसके बाद पेड्रो पारो ने 66वें मिनट में एक और गोल कर दिया। ओयारज़ाबाल के 89वें मिनट में अपना दूसरा गोल करके जीत पक्की कर दी। अब अंतिम 16 में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल या क्रोशिया से होगा। कनाडा ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ी तानिया हेमनाथ अमेरिका की दिशा गुप्ता को 21-16, 21-18 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला जापान की रिको गुंजी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The PM said India and Japan reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both PMs jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. India and Japan agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi yesterday. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on energy resilience, both sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri yesterday said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap.

3:10 हुए हैं। दोस्तों आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम हमराही, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कहते हैं जिंदगी में कुछ मौसम ऐसे भी आते हैं जब दिलों के बीच की दूरियां खुद ब खुद मिटने लगती हैं और मुलाकातों की खुशबू फिजाओं में घुल जाती है। इंतजार के बाद आने वाले ऐसे ही खूबसूरत पलों का एहसास कराता है फिल्म लवर्स का ये खूबसूरत सा गीत, आवाज लता मंगेशकर और अमित कुमार की है।

दोस्तों, प्यार जब दिल की धड़कनों में बस जाता है तो हर रास्ता, हर मौसम और हर एहसास उसी का नाम लेने लगता है। मन किसी और दुनिया में खोया खोया सा रहता है और हर पल बस अपने प्रिय की यादों के इर्द गिर्द ही घूमता है। ऐसी ही मासूम दीवानगी और मोहब्बत की मिठास से सजा है हमारा अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म प्रेम बंधन से, और आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं।

कहते हैं प्यार कभी दस्तक देकर नहीं आता, तो वो तो चुपके से दिल में उतर जाता है। फिर मुस्कानें भी बेवजह खिलने लगती हैं और हर धड़कन किसी का नाम गुनगुनाने लगती है। ऐसे ही शरारत, मासूमियत और प्यार के रंगों से सजा है हमारा अगला गीत। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। आवाज़ें किश कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं।

3:33 और 8 सेकेंड हुए हैं दोस्तों। FM गोल्ड यानी 100.1 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कहते हैं जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो शब्द भी महकने लगते हैं। एक खत और उसमें रखा एक फूल कभी कभी पूरे दिल का हाल कह देता है। प्यार की उसी मासूम खुशबू, इंतजार की मिठास और रिश्तों की गर्माहट को समेटे है फिल्म सरस्वती चंद्र का ये सदाबहार नगमा। आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में।

कभी कभी प्यार भरी एक छोटी सी नसीहत भी रिश्तों की मिठास को और गहरा कर देती है। साल 2066 की फिल्म ममता का ये सदाबहार गीत, इन बहारों में अकेले ना फिरो, छेड़छाड़ अपनापन और हल्की सी फिक्र को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की मधुर आवाजें इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना देती हैं। तो आइए आप और हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

प्यार सिर्फ इजहार का नाम नहीं, इसमें रूठना भी है, मनाना भी है और नोकझोंक भी है और मुस्कुराहट कर हार मान लेने का अपना ही आनंद भी है। कभी एक छोटी सी तकरार रिश्ते में ऐसी मिठास खोल देती है कि वही पल उम्र भर की याद बन जाता है। अब जो सदाबहार गीत आपको सुनाने जा रही हूँ, इसी चुलबुले अंदाज और प्यार भरी नोकझोंक का खूबसूरत सा उदाहरण है। इसमें रूठने की अदा है, मनाने की कोशिश है और दिलों के बीच छिपा वो अपनापन है जो हर शिकायत को मुस्कान में बदल देता है, कुछ इस तरह।

तेरे नैनों की मैं दीप जलाऊंगा। इस खूबसूरत से गीत को आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है अनुराग।

दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं झूठा कहीं का फिल्म का यह गीत, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्ज्वल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली

मेले के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इसमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त

0: होगी। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा आज ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। यह राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। फीफा विश्व कप में स्पेन ने राउंड ऑफ 32 की मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारजाबल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई, जिसके बाद पेड्रो पोरो ने 66वें मिनट में एक और गोल कर दिया। अब अंतिम 16 में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल या क्रोएशिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkoda in Haryana. India and Japan agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi yesterday. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri yesterday said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti, C.R. Patil, yesterday reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empowered Task Force on River Ganga. He emphasized that strengthening sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater and conserving

सुबह के 4:10 और 52 सेकेंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और इस समय आप सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी की मंजिल, पसंद और सपने अलग अलग होते हैं। दूसरों की राह देखकर अपनी दिशा मत बदलिए। जो आपके दिल को सुकून दे वही आपकी असली पहचान बन सकता है। बस होना चाहिए कि रिश्तों में सम्मान हो और जीवन में अपने मन की सच्ची आवाज सुनने का साहस। जब आप अपने मूल्यों और सपनों के साथ आगे बढ़ते हैं तभी सफर भी खूबसूरत बनता है और मंजिल भी। आइए सुनते हैं सफर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में।

जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कोई खास वजह नहीं होती, फिर भी मन नए नए सपने बुनने लगता है। यही छोटे छोटे ख्याल, यही अनदेखे एहसास आगे चलकर बड़े इरादों और नई मंजिलों की शुरुआत बन जाते हैं। फिल्म रजनीगंधा का एक खूबसूरत गीत है जो हमें याद दिलाता है कि हर सपना पहले एक ख्याल बनकर ही जन्म लेता है। इसलिए अपने मन की सकारात्मक सोच पर भरोसा रखिए, क्योंकि आज की एक छोटी सी उम्मीद कल आपकी सबसे बड़ी सफलता बन सकती है। तो आपको सुनवाते हैं रजनीगंधा फिल्म का गीत मुकेश के स्वर में।

दोस्तों, ज़िंदगी में गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपनी भूलों से सीख लेकर खुद को बेहतर बनाता है। पछतावा अगर बदलाव की शुरुआत बन जाए तो हर ठोकर एक नई मंजिल का रास्ता दिखा सकती है। फिल्म जनता हवलदार का एक ऐसा ही गीत है। इसी आत्म मंथन और एहसास को ये गीत खूबसूरती से व्यक्त करता है। तो आइए सुनते हैं इस दिल को छूने वाला नगमा जिसे स्वर दिया है अनवर ने। फिल्म का नाम है जनता हवलदार।

0: 4:30 होने को है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरी यानी अर्चना बिसारिया के साथ। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, समर्पण से बनते हैं। जब किसी की खुशी हमारी अपनी खुशी बन जाए तो जीवन के हर रंग और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। सच्चा अपनापन वही है जो बिना किसी अपेक्षा के मुस्कुराहट बांटता रहे। अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे उसमें प्रेम, समर्पण और जीवन की खूबसूरत भावनाओं का अनमोल एहसास है। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आनंद का ये गीत, आवाज मुकेश की है।
1: मैंने

कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि कोई हमें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, लेकिन याद रखिए, हर सफर का एक पड़ाव ऐसा भी होता है जहां सबसे पहले हमें खुद से दोस्ती करनी होती है। जब मन मजबूत हो जाए तो दुनिया की हर राह आसान लगने लगती है। ऐसा ही एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, अभिमान फिल्म का, आवाज किशोर कुमार की। ये गीत हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत अपने भीतर के विश्वास में छिपी होती है। जब आप खुद का साथ नहीं छोड़ते तो मंजिल देर से ही सही लेकिन मिलती जरूर है।

दोस्तों, ये बात तो हम जानते हैं कि जिंदगी में शोर बहुत है, लोगों की राय, उम्मीदें और सलाह, लेकिन इन सब के बीच एक आवाज़ ऐसी भी होती है जो कभी झूठ नहीं बोलती, आपके अपने दिल की आवाज़। जब इरादे सच्चे हों तो उसी आवाज़ पर भरोसा करना सबसे बड़ा साहस होता है। अपनी पहचान, अपने सपनों और अपने विश्वास को कभी खोने ना दें। जो अपने दिल की सच्ची पुकार सुनता है, वही जीवन की राह पर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। और ये गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं, उसे आवाज दी है हेमंत कुमार ने। फिल्म का नाम है अनुपमा।

दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन तब बनती है जब रिश्तों में तालमेल, विश्वास और अपनापन हो। जैसे सुर और गीत एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही साथ, सहयोग और संवेदनाएं जीवन को अर्थ देती हैं। आइए सुनते हैं ये गीत, जिसमें इसी मधुर संगम का खूबसूरत एहसास है। प्रेम, समर्पण और संगीत की मिठास से सजाइए नगमा आज भी दिलों को छू लेता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस गीत की, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

जिंदगी हमें हर पल यही सिखाती है कि सच और आत्मविश्वास से बढ़कर कोई ताकत नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, अपने वजूद को छिपाकर नहीं बल्कि पूरे हौसले और ईमानदारी के साथ जीना ही असली जीत है। इसी जज्बे को आवाज देता है हमारा ये गीत, हमें प्रेरित करता है कि डर या संकोच नहीं बल्कि सच्चाई, साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन का हर पल जिए। जी हाँ, अब आपको सुनवा रहे हैं ये खूबसूरत सा गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हमराज़।

चलते चलते हम एक बात आपको ज़रूर कहेंगे कि रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है और इसी बदलाव का नाम है जिंदगी। कभी लोग साथ चलते हैं, कभी राहें अलग हो जाती हैं, कभी अपने भी दूर लगते हैं तो कभी अजनबी दिल के करीब आ जाते हैं। लेकिन इन बदलते रिश्तों के बीच अगर कुछ अटल रहता है तो वो है आपका आत्मविश्वास और आपका सच्चा व्यक्तित्व। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि लोगों के बदलने से अपने सपनों का रास्ता मत बदलो। हर अनुभव आपको थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और समझदार बनाता है। तो दोस्तों, ये है कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर हम आपको ले चल रहे हैं। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते, आवाज़ किशोर कुमार की और सुमन कल्याणपुरी की है। आप आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम यानी अरुणिमा कार्यक्रम को समाप्त करने का। आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम में। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान की संबंध अति विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच से श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के साथ एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों को की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श होगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री

श्री पवित्रा मार्गरीटा आज ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। सीरिया के दशमिक के एक कैफे में विस्फोट में 9 लोगों की मौत की खबर है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट

5:10 और 56 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और आइए अब बारी है कार्यक्रम भोर सुहानी की। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है कभी अजनबी थे फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की।